0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट।
3: इट्स कमर्शियल टाइम।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
5: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
6: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
5: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
6: मुगल बिल्डर्स?
5: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
7: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
5: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
5: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
8: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
9: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
10: हजार 97.1 FM।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें. सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए. गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर. और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी. स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर. चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ. रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक. विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड, नॉटिंघम, या अभी राब्ता करें 07593150669. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ. ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
7: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM. आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव.
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: This is a public service announcement.
10: Everybody. The station.
11: That plays
12: foot tapping music.
13: Hazar 97.1 FM.
14: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप.
15: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM.

0: खैरियत जरा ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, maths and science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: This is a public service announcement.
11: The station
12: that plays
13: foot tapping music.
14: Hazar 97.1 FM.
15: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: We are playing Fazan 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays.
2: Foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: It's commercial time.
5: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
6: हेलो मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
6: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
8: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
10: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का।
12: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
13: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
12: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
13: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
12: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
14: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजान 97.1 FM,
6: आई लव इट।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: खैरी है जरा ये कमर्शियल तो सुन ले
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055, we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055, we'll be grown up by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो कहाँ पर हैं आप
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ या आपके दिल में या फिर ऑफिस में
7: अरे जाने दें बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास
8: आए हाय हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप
7: अरे मिर्चों से याद आया घर में ना आटा है ना दालें हैं ना चावल हैं और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है लेकिन आप तो आप है ना
8: तो फिक्र किस बात की है पाक फूड्स है ना जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152, Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106, Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

हुई से तुमको देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.

0: commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-772-92926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, यहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: Get ready to move.
6: It's all about the beat.
7: Wow FM.
8: Only tune Super Hit Channel.
9: Fizz on 97.1 FM.

0: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
12: You are listening 97.1 FM.

सिद्धू लिसनर्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट आज ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो दीवा डायलॉग जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। सिद्धू लिसनर्स, जैसे कि है आप सभी को मालूम कि रेडियो फजा 97.1 एफएम ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन। सो द लिसनर्स, रोजाना की तरह हर दिन हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए एक अदित नया टॉपिक, फिर हम उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। कुछ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, साथ ही साथ हम जानते हैं कि आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है और आप इसके हवाले से क्या सोचते हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या कहता है। सो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करती हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन आप हमसे शेयर करते हैं। सो कुछ इसी तरह से कुल मिलाकर बन जाता है हमारे प्रोग्राम का पैटर्न, यानी कि टीवा डायलॉग का ये पैटर्न। सो ये पैटर्न चलता है ठीक 10 बजे से लेके ठीक 12 बजे तक, यानी कि अब से लेके ठीक 2 घंटे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ। सो गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे, बहुत सारी गपशप होगी, बहुत सारी मालूमात आपसे शेयर की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी कि हर दिन की तरह आपका ये दिन भी रहे मोटिवेटेड, साथ ही साथ पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव वाइब से और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर। सो लिसनर्स, आपने क्या करना है अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत दिन का आगाज़ नहीं किया, तो आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत दिन का आगाज़, क्योंकि एक नया दिन आपका मुंतजर है। सो हर दिन की तरह इस आने वाले नए दिन की भी बहुत सारी स्ट्रगल होगी, चैलेंजेस होंगे जिनका सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब भी आपको ज़िंदगी में ऐसा लगे कि अब ये चैलेंजेस या फिर ये मुश्किलात आपकी विल पावर से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, तो आपने फौरी तौर पर खुद को रिमाइंड कराना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो जैसे ही आप खुद को ये चीज़ रिमाइंड करवाते हैं, कोई भी मुश्किल आपके लिए मुश्किल नहीं रहती और हर चीज़ खुद ब खुद आसान हो जाती है। सो दी लिसनर, सबसे पहले तो आप सुस्ती और काहली को छोड़ दीजिए और इस खूबसूरत दिन का आगाज़ कीजिए एक अच्छे से हेल्दी से ब्रेकफास्ट के साथ, क्योंकि मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि जब भी आप कभी एक नए दिन का आगाज़ करते हैं तो ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान को घर से बाहर निकलने के लिए, पूरे दिन काम काज करने के लिए, बहुत सारी स्ट्रगल करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो आपको वो एनर्जी का डोज कहाँ से मिलेगा? आपको वो एनर्जी का डोज मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे हेल्दी मील से। सो ज़रूरी नहीं होता कि जब भी आप के माइंड में ये चीज़ आए कि आपने एक ब्रेकफास्ट करना है तो आप कोई भी हैवी किस्म का ब्रेकफास्ट करें या फिर कोई हैवी मील कंज्यूम करें। आप सिंपली कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स खा सकते हैं। सो ये भी आपको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो इस एनर्जी के थ्रू आप पूरा दिन चाकू चौबंद रहते हैं। सो दी लिसनर, जल्दी से कॉफ़ी का मग या फिर चाय का कप बना लीजिए और आ जाइए अपनी बैल्कनी में, बाहर का खूबसूरत नज़ारा इंजॉय करें और साथ ही साथ दो से तीन मिनट में आप अपना कॉफ़ी का मग कंप्लीट करेंगे, इतनी देर में अपने पूरे दिन का शेड्यूल मैनेज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन प्रोडक्टिव रहे, आप पूरा दिन अच्छे अच्छे काम करें और आपका कीमती वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो, सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चले। और कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज़ द कीज टू सक्सेस। सो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों, कामयाबी आपके कदम चूमें, सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक चीज़ को प्रॉपर रिदम से करें और प्रॉपर प्लान करके करें। सो वेल लिसनर्स, अगर ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में या फिर आपको आज के दिन को प्लान करने में कोई भी दिक्कत या फिर दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर आप ही के लिए मौजूद हैं। सो वेल लिसनर्स, आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने तमाम तर आज के दिन के प्लान्स, गोल्स, क्या करने वाले हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं। सो अगर आपको इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी एडवाइस चाहिए, सो सिंपली आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू बता सकते हैं। सो मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपनी कीमती राय हमसे शेयर कर सकते हैं। सो
थी 0115710971। तो ये तो लिसनर्स ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। सो ये वो नंबर है जिसके थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है, आज के दिन के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, या फिर क्या ऐसे मोटिवेटेड एग्जाम हैं जो आप करना चाहते हैं अपने आज के इस दिन के अंदर। इसके अलावा अगर कोई भी जिंदगी के मामूलाती जिंदगी में आपको चाहिए कोई भी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस, तो उसके लिए भी आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं, या फिर आप किस स्पेसिफिक चीज़ को पसंद करते हैं। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि दीवा डायलॉग का ये पैटर्न या फिर हमारे प्रोग्राम का ये जो पूरा पर पैटर्न है वो आपके अकॉर्डिंग तैयार किया जाए। सो दे लिसनर्स, अगर कोई मालूमात शेयर करनी है या फिर अपना कोई भी पसंदीदा गाना प्रोग्राम में शामिल करवाना है, सो सिंपली आपको जाना होगा 0115710971। वहां जाके आपने अपने नाम के साथ कोई भी पैगाम या जो कुछ आप हमसे शेयर करना चाहते हैं बस लिखकर भेज देना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी हर तरह की क्यूरीज को दूर करें और आपकी सजेशंस को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। वेल लिसनर्स, इसी के साथ साथ आपको बताती चलती हूँ कि आप किस तरह से दीवा डायलॉग को ट्यून कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको जाना होगा एक वेबसाइट पे जो कि है www.radiofaza.com.uk। जी हाँ, ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। सो इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं, वेल आपको अगर रेडियो फजा 97.1 FM से जुड़ी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हर तरह की इंफॉर्मेशन आप सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट के थ्रू हासिल कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ भी है बहुत खूबसूरत बाअसर, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी मेरी तरह बातें शातें करने का शौक है, सो उसके लिए भी आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं बजरिया दिस वेबसाइट। और लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी प्रॉपर इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं, या फिर आपको हमें ट्यून करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप कोई भी वेबसाइट लॉगिन कर रहे होते हैं सो ड्यू टू द वाईफाई कनेक्शन कभी कभार थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये ट्यूनिंग काफ़ी हद तक स्मूथ रहे और आप आराम से सुकून से इत्मीनान से हमें यानी कि रेडियो फजा 97.1 FM को ट्यून करें, सो उसके लिए आपको सिंपली हमारी एप्लीकेशन को करना होगा इंस्टॉल। सो हमारी एप्लीकेशन है रेडियो फजा 97.1 FM। आपने सिंपली जाना है एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके सर्च बार में आपने लिखना है रेडियो फजा 97.1 FM और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे हो जाएगा डिस्प्ले। जी हाँ, यही है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लीजिए इसको इंस्टॉल और बन जाइए हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो मैंने एक एक करके सब आपसे बारी बारी शेयर कर दिए हैं। वेल ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप किस तरह से हमसे रब्ता करते हैं और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे, और मोस्टली लोगों ने तो अभी तक अपने दिन का आगाज कर लिया होगा। सो जिन्होंने दिन का आगाज कर लिया है उनको खुशामदीद, और जो अभी इसी सोच में मुब्तिला है उनको मैं ये मोटिवेशन देती हूँ कि बस जल्दी से इस दिन का आगाज कर ले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम गुजर चुका है और कामयाब वही लोग होते हैं जो अपने वक्त की कदर करते हैं। तो लिसनर्स, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह हर दिन की तरह आज भी डीवा डायलॉग में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक। सो टॉपिक के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो मुझे आपसे शेयर करनी है, साथ ही साथ आपकी भी बहुत सारी बातों को सुना जाएगा। सो उससे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक, ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गपशप का सिलसिला जारी करते हैं।

चलिए तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? उम्मीद तो यही है कि अच्छा लगा होगा। सो द लिसनर्स, आई थिंक सो कि अभी तक हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो कि सुस्ती और काहली में वो

0: शानदार थे, अब रिफ्रेश हो चुके होंगे और अब निकल चुके होंगे घरों से बाहर, यानी कि अपने ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर दीगर रोजमर्रा जिंदगी के मामूलाते कारोबार की जाने। सो वेल लिसनर्स, अगर आप भी इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो सफ़र है ये खूबसूरत बन जाए, यानी कि आपकी जो डेस्टिनेशन है वो और ये सफ़र इतना खूबसूरत और हसी बन जाए कि बस आपका दिल करे कि ये ड्राइव चलती चली जाए और सफ़र कभी ना रुके, सो उसके लिए आप हमें फजा टैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं और वहाँ पर हमारा साथ दे सकते हैं। सो डियर लिसनर्स, अगर आप पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर या हैं अभी भी रास्ते में, सो इस रास्ते को बनाइए और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा मेमोरेबल। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आप कभी ड्राइव कर रहे हों तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपना सारा फोकस ड्राइविंग पर रखें, क्योंकि ड्राइविंग इट्सेल्फ इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। और मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ उन लोगों पर जो कि इतना आराम से स्मूथली ड्राइव कर रहे होते हैं, क्योंकि अच्छा मुझे बहुत मुश्किल लगती है ड्राइविंग, पता नहीं क्यों। मुझे गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, मुझे बाइक्स भी अच्छी लगती हैं, स्कूटी भी बहुत कूल लगती है, लेकिन जब कभी मैं सोचती हूँ कि अच्छा मैं सोलो ड्राइव करूँ या फिर मैं खुद से कहीं पर जाऊँ, तो आई डोंट नो व्हाई मेरे माइंड में एक फियर आ जाता है जिसके चलते मैं कभी भी इस जानेब नहीं बढ़ती। सो आई सल्यूट टू द ऑल ऑफ पीपल जो कि डेली बेसिस पर बहुत आराम से स्मूथली इस कदर हैवी ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं। लेकिन आपको मेरी एक हमदर्दाना सी एडवाइस यही है कि जब भी कभी आप ड्राइव कर रहे हो तो बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है और हर इंसान को ज़िंदगी एक ही मर्तबा मिलती है। सो हो सकता है कि आप ये छोटे मोटे स्टंट के चक्कर में या फिर लोगों के सामने फ्लैक्स के चक्कर में कोई ऐसा हादसा कर बैठे जो कि आपके लिए ही बाद में नुकसान का मौजब बने या फिर आपकी फैमिली के लिए बने दुख का सबब। सो आपने ये नहीं सोचना कि आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप रैश ड्राइविंग कर लें जस्ट बिकॉज कि ये आपकी ज़िंदगी है, आपको एडवेंचर पसंद है या फिर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में थोड़ा सा थ्रिलर तो होना चाहिए। आपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आपके साथ आपकी बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियाँ भी जुड़ी हुई हैं। सो हो सकता है कि अगर आप कोई भी गलत स्टेप उठाते हैं या फिर कोई भी मिस्टेक आपसे हो जाती है तो उनकी ज़िंदगी कितनी बुरी तरह मुतासर हो। सो बी सेफ, बी केयरफुल। सो वेल लिसनर्स, आज के दिन के हवाले से बात कर लेते हैं तो आज मौसम काफ़ी हद तक बेहतर है, यानी कि अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम थोड़ा सा सर्दी की जाने बढ़ रहा है। अब आपको उस तरह से टेम्परेचर बिल्कुल भी फील नहीं होता, क्योंकि आज सुबह जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो रास्ते में आते आते मैं यही चीज़ रियलाइज़ कर रही थी कि डेली बेसिस पर जब मैं वॉक करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी सफोकेशन फील होती है, लेकिन आज मौसम इतना प्लेजेंट है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है, तो इसके चलते चलते मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं वॉक करके आ रही हूँ और जो इतना मुझे लगता है लंबा सफ़र लगता था वो बहुत ही कम लगा। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लोग अपने ज़िंदगी में वॉक को बिल्कुल ही नहीं प्रेफर करते, अच्छा लोग क्या करते हैं कि अगर उनको एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट भी जाना होता है तो वो लोग वॉक की जगह यूज़ करते हैं गाड़ी। तो मैं उन लोगों से यह पूछना चाहती हूँ कि इस कदर आपको आलसपन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान के जिस्म को भी हरकत की ज़रूरत होती है। सो मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि अगर मुझे किसी जगह जाना है जो जगह मेरे घर के बहुत करीब ही है या एक दो स्ट्रीट छोड़ कर आती है, सो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं वॉक करके जाऊँ। इससे ये रहता है कि आपकी नेचुरल वॉक भी हो जाती है जो आप डेली बेसिस पर, जैसे कि अब हम एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन इस तरह से वॉक हो जाती है, बॉडी भी एक्टिव रहती है और माइंड भी काफ़ी हद तक रिफ्रेश हो जाता है। सो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर कहीं आसपास जाना हो तो आप भी थोड़ी सी वॉक कर लिया करें, बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर सफ़र करें या फिर इलेक्ट्रिक कार्स पर सफ़र करें, क्योंकि इससे एक तो पोल्यूशन भी कम होगा, दूसरा ये कि आप भी एक्टिव रहेंगे, अदरवाइज आप आहिस्ता आहिस्ता करते करते थोड़े से सुस्त हो जाएंगे। सो वेल लिसनर्स, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा क्योंकि अब से लेके ठीक 2 घंटे तक हम और आप तो रहेंगे साथ साथ. सो डीवा डायलॉग में हम बहुत सारी चीजों को शामिल करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक दिन कमर्शियल ब्रेक का. सो हम आगे बैठे हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आप सभी से मुलाकात होती है ब्रेक के उस पार. सो आपने कहीं भी नहीं जाना, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बंधे रहें और आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें. हम बस यूं गए और यूं आए.
1: इट्स कमर्शियल टाइम.
2: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
7: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनती हुई समातों को खुशामदीद। रेडियो फजान 97.1 FM एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेजबान जैनब फातिमा, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो दीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजान 97.1 FM पे। तो लिसनर्स, ये सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन सभी हमारे चाहने वालों के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। सो अगर आपने भी अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, या फिर आप किसी मसरूफियत के बाइस पहले हमें ज्वाइन ना कर सके, तो आप जल्दी से हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर हमें बताइए कि आप कहाँ से हमें ट्यून कर रहे हैं और क्या करते करते ट्यून कर रहे हैं। सो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 01157100971। लिसनर्स, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत ही प्यारी सी फरमाइश मौसूल हुई है एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आप सभी की फरमाइशों का भरपूर ख्याल रखते हैं, तो जी शामिल करते हैं ये ट्रैक प्रोग्राम के अंदर। इस ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और फिर आज के टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून टू द फजा 97.1 FM।

तो लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब. सो आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगी. सो हम अपने डिस्कशन को कुछ इस तरह से रखेंगे कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके लिए वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा. सो बेसिकली आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के मुतल्लिक जो कि हम सभी की जिंदगी का एक डेली हिस्सा होती है, यानी कि मनी. सो बेसिकली आज हम बात करेंगे मनी, पैसा या फिर पावर की. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन. सो बेसिकली हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं, पैसे स्पेंड करते हैं, कभी कभार सेव भी कर लेते हैं और कभी मंथ के एंड में अकाउंट देखकर सोचते हैं ये पैसे कहाँ गायब हो गए. लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या पैसे कमाना ही इनफ होता है या फिर पैसों को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा स्किल है. सो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या पैसे कमाना ईजी होता है या फिर पैसों को मैनेज करना, और इस तरह से मैनेज करना कि आप अपनी ज़िंदगी के तमाम तर पहलू को साथ लेकर चलते चले जाएं और आपकी लाइफ बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो आपकी ज़िंदगी के किसी एक भी पहलू से. सो बेसिकली हम में से बहुत सारे लोग हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हों, जॉब कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों या फिर फ्यूचर में आपने करियर स्टार्ट करना हो, बेसिक मनी स्किल्स आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है. सो आज हम बस इसी चीज को डिस्कस करेंगे थ्रू दिस शो. सो सबसे पहले आज हम किन किन चीजों के ऊपर बात करेंगे वो मैं आपसे शेयर करती हूँ. सबसे पहले तो कि बजटिंग क्या होती है, नीड्स और वॉन्ट्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, हम सेविंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या फिर इम्पल्स बाइंग क्या होती है और इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं. सो इसी तरह के ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे और मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या आप अपनी जिंदगी को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, आप अपने मनी को, अपने एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं कि आपकी ओवरऑल लाइफ बहुत स्मूथली चले. सो ग्रैब योर इमेजिनरी कैलकुलेटर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मनी एंड लाइफ स्किल्स. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी मैनेजमेंट क्या होती है. सो मनी मैनेजमेंट एक्चुअली होता ये है कि हम मनी मैनेजमेंट का सिंपल मतलब ले लेते हैं, ठीक है. आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उसे कॉन्शियसली आपने प्लान करना है कि कितने कहाँ स्पेंड करने हैं, कितने सेव करने हैं और फ्यूचर के लिए आपने कितने पैसे इस्तेमाल करने हैं. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप हर वक्त पैसे खर्च करने से डरे. लाइफ एंजॉय भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप हर कप ऑफ कॉफी को देकर सोचें इस कॉफी के पैसे सेव कर लेती हूँ तो फिर लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बैलेंस की, कि किस तरह से हम हर चीज को बैलेंस कर सकते हैं. हम इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं कि हम किस तरह से अपने एक्सपेंस खर्च करें, किस तरह से सेव करें. सो आपको पता होना चाहिए कि मनी इज अ टूल नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ. पैसे एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, ट्रैवल में हेल्प कर सकते हैं, फैमिली को सपोर्ट करने में भी हेल्प कर सकते हैं, फ्यूचर गोल अचीव करने में भी हेल्प कर सकते हैं. लेकिन अगर हम पैसे का प्लान ही ना बनाए तो कभी कभी इनकम अच्छी होने के बावजूद भी आप बहुत बड़े खसारे में जा सकते हैं. सो बस इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके हवाले से हमारी यूथ में, हमारी सोसाइटी में बहुत कम अवेयरनेस है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें, क्योंकि आई नो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि आप किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप किस तरह से अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं कि आप किस तरह से अपनी इनकम को मैनेज कर सकते हैं. सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट. अब आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट में, ठीक है. अब सबसे पहले सेकेंडली ये कि पैसे मैनेजमेंट क्या होती है वो तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप अपने जो पैसे आपके पास मौजूद हैं उनको इस तरह से बैलेंस करें कि आप अपनी कीमती ज़रूरत की चीज़ें, वो सामान भी खरीद सकें, साथ ही साथ आप कुछ पैसे सेव भी कर सकें और साथ में आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर सकें. अब हम बात करते हैं कि बजट, पैसों का प्लान कैसे किया जा सकता है. सो बजटिंग क्या होता है. बजटिंग का नाम सुनकर कुछ लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि बस अब मेरी फ्रीडम खत्म. बट एक्चुअली बजटिंग का पर्पस आपको रिस्ट्रिक्ट करना नहीं, बल्कि बजट का असल पर्पस होता है आपको कंट्रोल देना. सो इमेजिन करें कि आपके मंथ में बिगिनिंग में कुछ पैसे मिलते हैं, आप पहले वीक में शॉपिंग कर लेती हैं, फिर फूड डिलीवरी, रैंडम ऑनलाइन परचेज, बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस और फिर मंथ के लास्ट डेज आ जाते हैं. अब नेक्स्ट पेमेंट का आप वेट करना शुरू कर देते हैं. सो बजटिंग इस प्रॉब्लम
आपको प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है. और जब आप प्रॉपरली बजटिंग कर लेते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके मंथ के आखिर में आपके पास बिल्कुल पैसे खत्म हो जाएं. सो बेसिकली जब भी आप बजटिंग कर रहे हो तो आप सिंपल कैटेगरीज बना सकते हैं. यहाँ मैंने भी कुछ कैटेगरीज बनाई हैं जो कि मैं आपसे शेयर करती हूँ. सो द फर्स्ट वन इज एसेंशियल. एसेंशियल में आ जाता है फूड, ट्रांसपोर्ट, बिल्स, एजुकेशन और नेसेसरी एक्सपेंसेस. सो सबसे पहले आपने अपना टॉप ऑफ द लिस्ट प्रायोरिटी रखनी है एसेंशियल्स को, यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे ज़रूरत का सामान जो कि हर मंथ के लिए बहुत ज़रूरी है. आपने सबसे पहले उन चीज़ों को परचेज करना है या फिर उन चीज़ों के लिए अपने पैसों को अलग से करके रखना है. फिर सेकेंडली आपने जो कैटेगराइज करना है वो है सेविंग्स. ठीक है, सबसे पहले आप एसेंशियल करें अपनी मंथली इनकम में से कि आपको ट्रांसपोर्ट के लिए, फूड के लिए, बिल के लिए, एजुकेशन के लिए कितने पैसे दरकार हैं. सो जैसे ही आप उन पैसों को अलग कर लें, अब बारी आती है हमारे सेविंग्स की कि फ्यूचर गोल्स के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए. बाज़ुकात अक्सर औकात ज़िंदगी में ऐसे नागहानी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे नहीं रहती जैसा आपने प्लान की होती है. सो उस सिचुएशन में आपको ज़रूरत पड़ती है सेविंग्स की. अब वो सेविंग्स अगर आपने की ही नहीं होंगी तो आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे. सो उसके लिए आपने कुछ पैसे अपनी हर मंथ की इनकम में से अलग से साइड पे रख देने हैं जो कि आपके फ्यूचर गोल्स में हेल्प आउट करेंगे. फिर तीसरे नंबर पे बारी आ जाती है पर्सनल स्पेंडिंग्स की. ठीक है, अब पर्सनल स्पेंडिंग में आ जाता है शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ईटीसी. सो बहुत सारे लोग, सबसे पहले आपने एसेंशियल्स को रखना है यानी कि बुनियादी ज़रूरत का सामान. सेकेंडली आपने रखना है सेविंग्स यानी कि अपने आने वाले कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए कुछ पैसे अलग से साइड पर रख देना. फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि हर एक इंसान, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, हम सब, हम में से इतने लोग जो कि डेली बेसिस पर जॉब कर रहे हैं या फिर हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. सो आई नो हम सभी के माइंड में ये भी चीज़ आती है कि आखिर हम पैसे क्यों कमा रहे हैं. जब हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते, जब हम अपने पर्सनल बेनिफिट्स की चीज़ें नहीं परचेज कर सकते. सो थर्ड नंबर पर हम रखेंगे पर्सनल स्पेंडिंग्स को, जिसमें हम हर मंथ शॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद हो, हमारा दिल करता हो उनको परचेज करने का, हम अपनी मंथली इनकम में से वो कर सकते हैं. फिर एंटरटेनमेंट आ जाती है. एंटरटेनमेंट में जैसे कि आप बहुत सारी एप्लीकेशंस की सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम या फिर वाईफाई का कनेक्शन. इसके अलावा अगर आपका दिल करता है तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कोई मूवी प्लान कर सकते हैं. सो इसके लिए भी आपको बजट बनाना बेहद ज़रूरी है. और तीसरे नंबर पे आता है ईटिंग. ईटिंग मीन्स कि आप फ्रेंड्स हैंग आउट करें या फिर किसी भी 5-स्टार होटल में जाएं. सो उस सब के लिए आपके पास एक बजट हो और ये आपकी तीसरी प्रायोरिटी होना चाहिए. फिर चौथे नंबर पे जो हमने कैटेगराइज किया है वो है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. सो बाज़ुकात समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अचानक से कोई ज़रूरत आ पड़ती है या फिर कोई खर्चा हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जैसे कि आई एम स्टूडेंट प्लस मैं जॉब भी करती हूँ. सो अचानक से अगर ऐसा होता है कि मुझे यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए कुछ गैजेट्स की ज़रूरत पड़ जाती है और मैं चाहती हूँ कि मैं अब उनको परचेज करूँ. सो ये बिल्कुल एक ऐसा ही खर्चा है जो अचानक से आ चुका है और बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं था. सो उन अचानक से आने वाले खर्चों के लिए, जो कि पूरे मंथ के अंदर किसी भी दिन किसी भी डेट को आ सकते हैं, सो उनके लिए भी आपके पास कुछ अमाउंट होनी चाहिए जिससे आप अपना पूरा मंथ स्पेंड कर सकें. कैन यू इमेजिन कि आप मंथ के स्टार्ट में एसेंशियल्स ले लेते हैं, आप सेविंग्स कर लेते हैं और फिर आप शॉपिंग कर लेते हैं और पीछे अब आपके पास कुछ बचता ही नहीं है कि आप पूरा मंथ किस तरह से स्पेंड करें. हो सकता है आपको कभी बाहर जाना पड़ जाए, अचानक से आप बीमार हो जाओ, डॉक्टर को दिखाना पड़ जाए. सो उस सब के लिए आपने अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी ज़रूर रखने हैं. सो एग्जैक्ट परसेंटेज हर पर्सन के लिए सेम नहीं होती. आपकी इनकम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हो सकती है. इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का खर्चा निकाल के रखें. और द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं. सो यू नीड टू नो कि आप जो पैसे कमा रहे हैं वो आप किस तरह से खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आई नो इट्स 2026 और पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है. इसीलिए मैं आज आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप मनी मैनेजमेंट स्किल हासिल कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने मनी को मैनेज कर सकते हैं. सो वेल लिसनर्स, ये था हमारा सेकंड पॉइंट. फर्स्टली हमने समझा कि बेसिकली मनी मैनेजमेंट क्या होती है, और सेकंडली हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि बजटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं. सो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे. अब हम आगे डिस्कस करते हैं फर्दर के नीड्स और वॉन्ट्स क्या होती हैं. अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि नीड्स और वॉन्ट्स दोनों बिल्कुल सिमिलर होती हैं. सो मैं आपको बताते चलती हूँ कि इन दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है. सो वो डिफरेंस भी मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक अदद होप्स और सेट ट्रैक. सो मुझे बताइएगा कि आप किस तरह का ट्रैक सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम प्रोग्राम में वो ट्रैक्स को शामिल करें जो हमारे लिसनर्स के हों पसंदीदा. सो फिलहाल के लिए मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और देख रही हूँ कि किस तरह का ट्रैक हमें प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए. सो सुनते हैं ये ट्रैक. ट्रैक के उस पार आपसे होती है मुलाकात, और फिर हम अपने इसी टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे ट्यून टू द फजा 97.1 FM.

तराशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: वेल लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत से ट्रैक? उम्मीद तो यही है कि आपकी पसंदीदा ट्रैक्स को हम इसी तरह से प्रोग्राम में शामिल करते रहें। सो अभी फिलहाल के लिए वक्त हुआ है टीवा डायलॉग में एक अदित कमर्शियल ब्रेक का। सो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब और ब्रेक से वापसी पे। जब हम कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो हम दोबारा से अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपसे शेयर करूंगी और भी बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि किस तरह से आप अपनी इनकम को, अपने एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप मैनेजमेंट सीखें। जब आप मैनेजमेंट सीखेंगे तो आपकी इनकम कभी भी आपके लिए थोड़ी नहीं होगी और आप अपने रिसोर्सेज को अपने प्रेजेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अच्छे से सेव कर सकेंगे। So stay tuned to the Faza 97.1 FM and we will be right back after a very short break.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together, it all adds up.
8: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
10: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
11: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
10: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
11: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
10: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
11: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
10: Park Foods, जो नाम है मायार का।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुशामदीद। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो, आपका अपना कंफर्ट प्लेस दीवा डायलॉग, और मैं हूं आपकी मेजबान ज़ैनब फातिमा। तो लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी के लिए रिपीट करती चलती हूँ कि 0115710971 ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। सो इस नंबर के थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने कीमती थॉट्स, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं। साथ ही साथ आप www.radiofaza.com.uk इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, और मज़े की बात, आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही आसान सा है, मैं आपसे एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। आपको बस सिंपली जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM, और विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। सो आपने जल्दी से बस उसको कर लेना है इंस्टॉल। सो जैसे ही आप कर लेंगे इंस्टॉल, वैसे ही आप बन जाएंगे हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए हो, चाहे वो हो रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेटेड, या फिर आपको ये जानना हो कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है आने वाला, सो हर तरह की मालूमात आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट और एप्लीकेशन पे। तो लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी से शेयर कर देती हूँ, हमारा आज का टॉपिक है मनी एंड लाइफ स्किल्स। यानी कि आज हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी मंथली इनकम को इजीली मैनेज कर सकते हैं, बजटिंग किस तरह से कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप किस तरह से एक अच्छा प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। सो सबसे पहले हमने पॉइंट पे बात की थी, वो था मनी मैनेजमेंट बेसिकली होती क्या है, एंड सेकेंडली वी डिस्कस कि बजटिंग किस तरह से की जा सकती है। अब हम बात करेंगे नीड्स और वांट्स में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की फरमाइश मौसूल हो चुकी है। तो आप सभी की भरपूर फरमाइश पर प्रोग्राम में इस ट्रैक को शामिल करते हैं। ट्रैक के उस पर हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। सो आप ये खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय करें।

जी हेलो लिसनर्स, अब हम वापस से कंटिन्यू करते हैं अपने उसी टॉपिक को. सो द थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स. सो मैं अब आपसे शेयर करती हूँ कि एक्चुअली नीड्स क्या होती हैं और वांट्स क्या होती हैं.

सी अगर लिसनर्स, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नीड्स बेसिकली होती क्या हैं, ठीक है? सो नीड्स और वांट्स, ठीक है? अब नीड्स वो चीज़ें जो लाइफ के लिए बहुत ही जनरली ज़रूरी होती हैं. सो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बेहद ज़रूरी होती हैं, जिनके बिना हम जिंदगी नहीं तसव्वुर कर सकते, ठीक है? वो आ जाती हैं हमारी नीड्स में. जैसे मिसाल के तौर पर फूड, शेल्टर, वाटर, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं. और जैसा कि आप सभी ने सुनी भी होगी, मैस्लोज़ हायरार्की थ्योरी, ठीक है? सो मैस्लो हायरार्की थ्योरी में भी सबसे पहले कहा गया कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बेसिक जो नीड्स होती हैं वो पाँच होती हैं. सो जब मैस्लो ने उन नीड्स को डिवाइड किया तो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट जो नीड्स थी वो यही थी, जिसमें आ जाता है हमारा फूड, शेल्टर, वाटर, ये वो तमाम तर बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके बिना आप जिंदगी तसव्वुर नहीं कर सकते. सो इनको हम कहते हैं नीड्स. अब बात करते हैं वांट्स. वांट्स वो चीज़ें जो आपको चाहिए लेकिन उसके बिना भी आप अपनी ज़िंदगी तसव्वुर कर सकते हैं. आपकी ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा है लेकिन स्टिल आप बस उनको अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बिना पर अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं. सो एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि फूड अब हमारे लिए एक नीड है, ठीक है? अब फूड मीन्स नीड. अब फूड के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते. सो यू हैव टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन फूड. बट इफ़ यू वांट कि फूड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर घर पर सिंपल खाना बना हुआ है लेकिन यू वांट टू ईट पिज़्ज़ा, और अगर आप चाहते हैं कि अब आप पिज़्ज़ा ईट खाएं, तो उसके लिए आपको अपने पैसे यानी कि अपने इनकम में से कुछ अमाउंट खर्च करनी पड़ेगी. सो बेसिकली जो पिज़्ज़ा है वो आपकी वांट है. आपको पर्सनली

अंदाजा होगा कि क्या वाकई ही अब आपको उसकी जरूरत है या नहीं। सो अगर उस वक्त भी आपको जरूरत महसूस हो तो इट मीन्स कि आप उसको परचेज कर लें, आपके लिए जरूरी है। बट अगर ऐसा होता है कि आपको लगने लगता है कि अच्छा इसके बिना भी मेरा काम चल जाएगा, तो आप उसको स्किप कर दें, क्योंकि एक अच्छी मनी मैनेजमेंट स्किल में सबसे जरूरी यही होता है कि आप अपने नीड्स और वांट्स का डिफरेंस याद रखें और उस हिसाब से आप अपनी मनी को स्पेंड करें। सो वेल लिसनर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था कि व्हाट इज मनी एंड हाउ टू मैनेज मनी, यानी कि मनी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल। सो सबसे पहले हमने बात की कि मनी हम डेली बेस पर यूज करते हैं जो कि हमारे रोजमर्रा की मामूलात जिंदगी का हिस्सा है। साथ ही साथ हमने बात की कि मनी मैनेजमेंट क्या होती है, कि हम किस तरह से मनी को मैनेज कर सकते हैं। सो फिर आ जाते हैं, हमने बात की कि बजटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि हर मंथ जो हमारा एक मंथली इनकम होती है, हमारा मंथली बजट होता है, हम वो किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसेंशियल्स को रखते हैं, एसेंशियल्स के बाद हम रखते हैं सेविंग्स को अपने फ्यूचर गोल्स के लिए। देन जब सेविंग्स से भी बात खत्म हो जाती है, फिर आते हैं हमारे पर्सनल इंटरेस्ट, और फिर आखिर में आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, यानी कि पूरा महीना चलाने के लिए कुछ ऐसी अमाउंट ऑफ मनी जिसे हम साइड पर रख दें और जहां भी जब भी कभी हमें ज़रूरत पेश आए तो हम उसको इस्तेमाल करें। सो फिर हमने बात की कि एक्चुअली आपकी नीड्स क्या होती हैं और आपकी वांट्स क्या होती हैं। सो उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिली होगी कि जब आप डेली बेसिस पर, जैसे कि हमारा शो है डीवा डायलॉग, सो मोस्टली फीमेल्स हमारा प्रोग्राम ट्यून करती हैं। सो आई नो आप हाउसवाइफ हैं, आप घर पर रहती हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं समझ आ रहा होता कि आप किस तरह से प्रॉपर प्लानिंग करें, किस तरह से आप अपनी मनी को मैनेज करें कि आप पूरा मंथ चला सकें, अपने बच्चों के एक्सपेंस पूरे कर सकें और एक अच्छी खुशहाल जिंदगी ना सिर्फ प्रेजेंट में बल्कि फ्यूचर में भी जी सकें। सो इसीलिए मैंने सोचा कि हम इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं जो कि थोड़ा सा सीरियस तो था लेकिन स्टिल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। आई होप इससे आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अब आपको मालूम हो चुका होगा कि किस तरह से नेक्स्ट मंथ आपने अपनी मनी प्लानिंग करनी है और किस तरह से आपने बजटिंग करनी है। वेल, अगर इस हवाले से आपका कोई भी कुछ भी कहना हो या आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो हमसे, सो 01157100971 आप इस नंबर के थ्रू हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपको अपना बताती हूँ। सो जब व्हेन आई स्टार्ट डूइंग अ जॉब, ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं भी इसी तरह थी, बहुत ज़्यादा नॉन चलांट, कि मैं क्या करती थी कि मैं अपनी पूरी सैलरी को इस तरह से ही इंजॉयमेंट में स्पेंड कर देती थी। बट देन आफ्टर फ्यू मंथ्स आई रियलाइज कि लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमें ज़िंदगी के हर पहलू के लिए सोचना चाहिए। सो साथ ही साथ जहां हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी सैलरी से, अपनी मंथली इनकम से अपना आज, अपना प्रेजेंट बहुत खूबसूरत बनाकर स्पेंड करें, तो उधर ही हमारी नज़र और हमारा फोकस इस चीज़ पर भी जाना चाहिए कि फ्यूचर में भी क्या हम इस तरह की लग्जरी जिंदगी बसर कर सकते हैं या नहीं। सो उसके लिए ज़रूरी है मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, हर चीज़ की मैनेजमेंट, क्योंकि जब आप मनी मैनेजमेंट करेंगे तभी आपका प्रेजेंट भी सिक्योर होगा, तभी जाके आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। सो ये तो मेरी एक पर्सनल थिंकिंग थी, तो मैंने इस थिंकिंग पर अमल किया और फिर मैंने कुछ सेविंग स्टार्ट की और अब मुझे काफ़ी हद तक आदत हो चुकी है। सो अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी न्यू मंथ स्टार्ट होता है तो मैं अपने असेंशियल को सबसे पहले रखती हूँ, असेंशियल्स के बाद मैं सेविंग्स करती हूँ। और आपको जस्ट ये नहीं करना होता कि जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं या फिर जो आपको सैलरी मिल रही है, आप बस हर मंथ के हर मंथ उसको ख़त्म कर दें। साथ ही साथ आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ भी करनी होती है, सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेविंग करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा। वेल, अगर आप भी हमसे शेयर करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक, या आप चाहते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और मज़ीद ये कि अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए जिस पे आप चाहते हैं कि मैं कोई सीरीज स्टार्ट करूँ या फिर मैं कोई डिस्कशन करूँ, सो डू लेट मी नो। अभी फ़िलहाल के लिए प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदर ट्रैक को सुनने का। सो अब एक सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक। कौन सा ट्रैक सुनना चाहते हैं आप भी बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए
अट्रैक्ट मेरी आंखों के सामने से गुजर

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम तरह सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। जी तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे। सो जहाँ हम करते हैं बहुत सारी गपशप, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातचीत और बहुत सारी मोटिवेटेड गपशप। सो पूरी कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम डीवा डायलॉग के थ्रू आप तक पहुंचाएं थोड़ी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, साथ ही साथ हम दीगर मामूलात ज़िंदगी से मुतलिक भी गपशप करें, कुछ आपकी पर्सनल थॉट्स को जानें और साथ ही साथ कुछ आपसे अपने पर्सनल थॉट्स को शेयर करें। सो अभी फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक बहुत ही ज़बरदस्त से सेगमेंट को स्टार्ट करने का, जो कि मेरा और आपका, हम सभी का फेवरेट है, क्योंकि इस सेगमेंट में डेली बेसिस पर हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ की, यानी कि ऐसी रेसिपीज़ जो कि हों भी बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस, साथ ही साथ रेसिपीज़ डिलिशियस हों और मज़े की बात ये कि बहुत ही ज़्यादा झटपट बन जाती हों। सो हमें बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट्स ना पुट करने पड़े और हम जल्दी से इनको रेडी कर लें, क्योंकि क्योंकि जब से मैंने जॉब स्टार्ट की है, आई रियलाइज कि लाइफ बिकम्स रियली टफ जब आप स्टूडेंट होते हो, साथ ही साथ आपको पार्ट टाइम जॉब करनी होती है। सो आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना होता है। सो देन आई रियलाइज कि जितनी भी हमारी डीवाज हैं, हमारी पावरफुल डीवाज, यानी कि वो तमाम तरह फीमेल्स जो घरों में रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, या फिर अपनी फैमिली को टाइम देती हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, बड़ों का, बच्चों का, सभी का ख्याल उनको रखना होता है। सो आई नो इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप डेली बेसिस पर ये डिसाइड करें कि अच्छा आज खाने में क्या बनाया जाए। और फिर सबसे कठिन मरहला ये होता है कि जब आप डिसाइड कर रहे होते हो कि आज अच्छा मुझे खाने में ये बनाना है, फिर आप ये भी देखते हो कि घर में जितने भी अफराद हैं, क्या सभी को ये खाना अच्छा लग रहा है या नहीं। सो ये वो तमाम तरह थॉट्स होती हैं जो आप सबके माइंड में पॉप अप कर रही होती हैं जब आप सोचते हैं कि आज खाने में क्या बनाया जाए। सो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपकी इस समस्या को दूर करूँ, क्योंकि मैं ना सिर्फ आपकी होस्ट हूँ बल्कि हूँ आपकी दोस्त, और भरपूर कोशिश यही करती हूँ कि हम अपने सभी लिसनर्स का भरपूर ख्याल रखें। सॉरी लिसनर्स, हमेशा की तरह आज भी द स्पाइस किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी दो रेसिपीज जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सो आज की हमारी पहली रेसिपी है क्रीमी चिकन पास्ता, क्योंकि आई नो पास्ता सभी का फेवरेट होता है, चाहे बच्चे हों या हों बड़े, सब पास्ता को बहुत शौक से खाते हैं। सो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे अपने प्रोग्राम में शामिल करें। सो सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करती हूँ क्रीमी चिकन पास्ता के इंग्रेडिएंट्स। सो जल्दी से आप अपनी नोटबुक, डायरी, कॉपी रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ इंग्रेडिएंट्स। सो जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। सो सबसे पहले पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन 500 ग्राम्स, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून और कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून। अब पास्ता के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए एंड क्रीमी सॉस के लिए, वो मैं अब आपसे शेयर करती हूँ। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने आपसे शेयर किए हैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे चिकन मैरिनेशन में। सो पास्ता के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पैनी या फिर मैकरोनी पास्ता 250 ग्राम्स, पानी 5 से 6 कप, नमक 1 टीस्पून और कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून। सो अब क्रीमी सॉस को बनाने के लिए हमें चाहिए बटर 2 टेबलस्पून, गार्लिक 1 टेबलस्पून, मैदा 1 से 2 चम्मच, दूध 2 कप, फ्रेश क्रीम 1.5 कप, चैटर चीज़ 1.5 कप ग्रेटेड, मोजरेला चीज़ 1.5 कप, काली मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, ओरिगैनो 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1.5 टीस्पून, नमक ज़रूरत के मुताबिक और शिमला मिर्च 1.5 कप, स्वीट कॉर्न 1.5 कप एंड मशरूम्स 1.5 कप स्लाइस्ड, आप टोटली ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो आप इनको कट कर लें या फिर आप चाहें तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं।

सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सब इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आपसे कर दिए हैं शेयर. अब आगे चलते हैं प्रोसीजर की जानिब. सो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे और जो सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपसे सबसे पहले शेयर किए हैं अब वो हम इस्तेमाल करेंगे. सो अब आपने ले लेना है एक अदद बाउल. बाउल में आपने ऐड करने हैं चिकन क्यूब्स, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, गार्लिक पेस्ट और लेमन जूस. सो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आप उसमें मिक्स कर लीजिए. सो चिकन को कम से कम आपने 15 से लेकर 20 मिनट तक मैरिनेट होने देना है. अगर आपके पास टाइम हो तो चिकन को आप 30 से 40 मिनट भी मैरिनेट कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली द टाइम. वैसे आप चिकन को जितनी ज़्यादा देर मैरिनेट करते हैं उतना ही जूसी, टेंडर और डिलीशियस बनता है चिकन. अब एक लार्ज

जैसे ही आपका पास्ता कुक हो जाए तो अब आपने उसे अच्छे से कर लेना है स्ट्रेन। थोड़ा सा पास्ता वाटर आप अलग से निकाल कर रख ले। ये वो वाटर है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे सॉस बनाने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी सॉस ऑटोमेटिकली बहुत थिक हो जाती है। सो इस सूरत में हम उस वाटर को ऐड करके अपनी सॉस को थिन कर सकते हैं। अब एक पैन में आप 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म कर ले। अब शामिल करें इसमें मैरिनेटेड चिकन, मीडियम फ्लेम पर 8 से लेकर 10 मिनट तक कुक कर लें। अब आपने चिकन को तब तक कुक करना है कि जब तक वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए और अंदर से बिल्कुल कम्प्लीटली कुक्ड दिखे। अब इसी पैन में आप बटर शामिल कर ले, चॉप्ड गार्लिक, साथ ही साथ और भी इंग्रेडिएंट्स। सो अगर आपने मशरूम्स ऐड करने हैं तो इट्स अप टू यू, इट्स टोटली योर चॉइस। 30 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई कर ले। आपने कोशिश करनी है कि गार्लिक बिल्कुल भी ना जले, अदरवाइज जो सॉस का टेस्ट है वो थोड़ा सा बिटर हो सकता है। अब मैदा शामिल करें, लो फ्लेम पर 1 मिनट तक मिक्स करें। धीरे धीरे दूध शामिल करते चले जाएं, कंटिन्यूसली विस्क करते रहें ताकि लम्स ना बने। जब सॉस थोड़ा थिक होने लगे फ्रेश क्रीम ऐड कर दें। अब नमक, काले मिर्च, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, इन सभी को बीच में शामिल कर दें। इसके बाद चेडर चीज, मोजरेला चीज, इन सबको भी आपने साथ ही ऐड कर देना है। सो चीज मेल्ट होने तक सॉस को जेंटली आप मिक्स करते रहें। अब चॉप्ड शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न्स, मशरूम्स, इनको शामिल करिए। सब्जियों को 2 से लेकर 3 मिनट तक कुक कर लिए ताकि उनका क्रंच बिल्कुल भी मेंटेन रहे। अब कुक चिकन, सॉस, इन दोनों को शामिल करें। आखिर में बॉयल्ड पास्ता, साथ ही साथ आप इसमें सॉस ज़्यादा थिक ना हो क्योंकि इससे आप सर्विंग करते हुए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो अगर आपको लगने लगे तो थोड़ा सा वाटर ऐड कर लें। पास्ता को 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करें ताकि सॉस आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये रहा आपका मज़ेदार सा क्रीमी चिकन पास्ता, हो गया तैयार। जी लिसनर्स, ये थी हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी, क्रीमी चिकन पास्ता। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो देखा कितनी सिंपल सी थी, कितनी झटपट सी थी और कितनी आसानी से बनने वाली थी। सो आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा क्योंकि ये ना सिर्फ आपका वक्त बचाएगी बल्कि आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट भी प्रोवाइड करेगी। वेल लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं अगली रेसिपी की जानिब जो कि है बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस और पर्सनली मेरी फेवरेट है क्योंकि इट्स माय चाइल्डहुड रेसिपी, तो इसे मैं बचपन से लेके अब तक खाती चली आ रही हूँ। लेकिन उससे पहले हम शामिल कर लेते हैं एक अदर ट्रैक क्योंकि आपको साथ ही साथ एंटरटेन करना भी तो ज़रूरी है। सो पूरी कोशिश यही होती है कि हम गपशप भी करें और साथ ही साथ ट्रैक्स का सिलसिला भी चलता रहे। सो सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, ट्रैक के उस पार होती है मुलाकात।

जी लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? सो वेल लिसनर्स, मैं सोच रही थी कि आपके साथ कमर मतलब इस ट्रैक के उस पर एक ज़बरदस्ती शॉर्ट सी रेसिपी शेयर करूं, बट अभी मैंने देखा कि रेसिपी तो हमारी थोड़ी सी डिटेल्ड है और आई फील लाइक कि अभी हमारे पास उस तरह से वक्त भी नहीं है. सो अगर मैं आपसे ये शेयर करती भी हूँ तो माइट बी पॉसिबल कि आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर सके. सो हम इसे कल के लिए रख देते हैं और कल जैसे ही हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर दूंगी सबसे पहले द स्पाइस किचन में, क्योंकि अभी बहुत ही लिमिटेड सा वक्त बाकी रह चुका है आपको और मुझे, और मुझे लिटरली एहसास ही नहीं हो रहा कि किस कदर तेजी से वक्त गुजर गया है. ऐसा लग रहा है कि अभी तो आपने और मैंने गपशप का सिलसिला जारी किया था, अभी तो करने को बहुत सी बातें बाकी थी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म. सो बदकिस्मती से अब वक्त तो हमारे पास नहीं रहा, तो आप अपनी वो तमाम तर बातें जो आप मुझसे अभी भी शेयर करना चाहते थे बट नहीं कर सके क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड था, तो आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि किस तरह से आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, डीवा डायलॉग का हिस्सा बन सकते हैं और रेडियो फजा 97.1 एफएम का हिस्सा बन सकते हैं. सो 01157100971 ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर. सो ये वो नंबर है जिसके थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने तमाम तर थॉट्स. सो आज के प्रोग्राम के हवाले से आपका क्या कहना है, आज के टॉपिक के हवाले से आपका क्या कहना है, और मज़ीद ये कि अगर आप मुझे भी कोई अच्छा सा टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि अच्छा आप इस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहते हैं और मैं भी इस मौजू को प्रोग्राम में शामिल करूँ, तो आप मुझे इस नंबर के थ्रू बता सकते हैं और फीडबैक क्लास में दिया करें. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक हमसे शेयर करते हैं, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने की, आप तक आने की. सो वेल लिसनर्स, एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.radiofaza.com.uk. सो अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है या फिर आप भी अपनी आवाज़ का जादू जगाना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको विजिट करना होगा हमारी इस वेबसाइट को और आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन रेडियो फजा 97.1 FM से जुड़ी इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी. सो आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा, और मज़ीद ये कि आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM, जो कि वह आसानी आपको गूगल स्टोर या फिर एप्पल स्टोर पर मिल जाएगी. सो दी लिसनर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म. उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी होस्ट आज ज़ैनब फातिमा को दीजिएगा इजाज़त. आपसे मुलाकात होती है कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी गॉसिप्स के साथ. सो स्टे ट्यून टू द फजा 97.1 FM. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. और जाते जाते आप सभी के लिए एक अदद प्यारा सा ट्रैक में प्ले कर देती हूँ जो कि मुझे बहुत आजकल अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों. सो आप इस ट्रैक को एंजॉय करें और मुझे अलविदा करें. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
0: बिगर बिगर एंड बेटर बेटर द रेडियो स्टेशन फॉर पीपल हु लव म्यूजिक। 97.1 FM।

0: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रापता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
7: Radio Bazaar 97.1 FM.

अब जरा अपनी गाड़ी में बैठे हुए दोस्तों से भी बात हो जाए। अगर आप इस वक्त सफर करें तो जनाब रफ्तार काबू में रखिए, सीट बेल्ट बांधिए, मोबाइल फोन से दूर रहिए और रेडियो फजा की आवाज के साथ अपना सफर खूबसूरत बनाइए। और जो दोस्त दुकान पर बैठे हैं जनाब ग्राहक आए हैं तो रेडियो बंद मत कीजिएगा, आवाज थोड़ी कम कर लीजिए, कारोबार भी चलता रहे और प्रोग्राम भी। और जो दोस्त दफ्तर में बैठे हैं अगर बॉस सामने बैठे हैं तो जरा मुहतात रहिएगा, क्योंकि रेडियो फजा सुनना अच्छी बात है लेकिन काम के वक्त काम भी जरूरी है। घर में मौजूद हमारी माओ बहनों और बेटियों को भी बहुत सा सलाम, आपकी मसरूफियात, आपकी मेहनत, आपकी दुआएं ये सब हमारे घरों को घर बनाती हैं। तो आज की इस दोपहर को सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाइए, जो हो गया, जो गुजर गया, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं, आपके पास सिर्फ आज है। और आज को खूबसूरत बनाइए, किसी से मोहब्बत से बात कीजिए, किसी को माफ कीजिए, किसी की मदद कीजिए, अपने काम पे तवज्जो दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, अपने ख्वाब के लिए कदम जरूर उठाइए, चाहे वो कदम बहुत छोटा क्यों ना हो, क्योंकि याद रखिए छोटे छोटे कदम ही बड़े सफर मुकम्मल करते हैं। और आखिर में अगर आज आपको लग रहा है आपकी जिंदगी रुकी है तो मेरी आवाज़ सिर्फ रेडियो की आवाज़ ना समझें, इसे एक याद दहानी समझें, आप खत्म नहीं हुए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आपके अंदर बहुत कुछ बाकी, आपके ख्वाब बाकी हैं, आपकी मेहनत बाकी है, आपकी दुआएं बाकी हैं, आपकी मंजिल बाकी है और सबसे बढ़कर जिंदगी भी बाकी है। तो मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए, अपने रब का शुक्रिया अदा कीजिए और फिर एक बार फिर शुरू कीजिए, क्योंकि शायद आपकी अगली कोशिश ही वो कोशिश हो जिसके बाद आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी,

दोस्तों बात हो रही थी जिंदगी की, और जिंदगी भी क्या खूबसूरत चीज़ है ना, कभी हंसा देती है, कभी रुला देती है, कभी ऐसे मोड़ पे ला खड़ा करती है जहाँ इंसान को समझ ही नहीं आती कि अब आगे जाना है वापस मुड़ना है। लेकिन शायद जिंदगी का असल हुस्न ही है, हमें हर हर चीज़ पहले से मालूम होती है। अगर हमें पहले ही मालूम होता है कल क्या होगा, कौन मिलेगा, कौन बिछड़ जाएगा, कौन कामयाब होगा, कौन नाकाम होगा, तो शायद जिंदगी में वो खूबसूरती ही नहीं रहती। जिंदगी एक सफर है, और सफर का मजा मंजिल से ज्यादा रास्ते में होता है। कभी रास्ते में खूबसूरत मंजर मिलता है, कभी बारिश मिलती है, कभी धूप, कभी ट्रैफिक, कभी सड़क बिल्कुल खाली, और कभी ऐसे लगता है कि मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन गाड़ी चलती रहे तो मंजिल आ ही जाती है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में बस चलते रहने, आपको हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा, कुछ फैसलों का नतीजा फौरन नहीं आएगा, कुछ दुआओं की कबूलियत में वक्त लगेगा, कुछ मेहनत का फल देर से मिलेगा, कुछ लोग आपकी कदर उस वक्त करेंगे जब आप उनकी जिंदगी में मौजूद नहीं होंगे। इसलिए हर चीज को फौरन हासिल करने की जिद ना करें, कुछ चीजों को वक्त दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, अपनी मेहनत को वक्त दीजिए, अपने ख्वाबों को वक्त दीजिए, और अपने रब के फैसलों पर भरोसा रखिए, क्योंकि हम सिर्फ आज देखते हैं, अल्लाह पूरी तस्वीर देखता है, हम सिर्फ एक सफ़ा देखते हैं, अल्लाह पूरी किताब जानता है। और शायद यही वजह कभी कभी हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ अरसे बाद हमें समझ आती है कि अच्छा हुआ वो नहीं हुआ। कभी हम भी किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी इंसान समझते थे, फिर वो शख्स ज़िंदगी से चला जाता है, हम टूट जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब हम कैसे रहेंगे, लेकिन वक्त गुजरता है और एक दिन हम पीछे मुड़ कर देखते हैं और कहते हैं मैं तो समझता था कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन अल्लाह ने मुझे संभाल लिया। यही तो ज़िंदगी है दोस्तों, हम टूटते हैं फिर जुड़ते हैं, हम रोते हैं फिर मुस्कुराते हैं, हम गिरते हैं फिर उठते हैं, और यही उठना इंसान की असल ताकत है। तो अगर आज कोई दोस्त इस वक्त हमारी आवाज़ सुन रहा है और हमें किसी मुश्किल में है, तो मैं उस दोस्त से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपने आप को अकेला मत समझें, बात कीजिए किसी अपने से, बात कीजिए, अपनी परेशानी दिल में दफन करके मत रखिए। और अगर कोई इंसान नहीं मिला तो जिससे बात कर सकें, तो अपने रब के सामने बैठ जाइए, दो रकत नफल पढ़िए, दुआ कीजिए, अपना दिल खोल कर बात कीजिए, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम है, दुआ उम्मीद का नाम भी है, और उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है।

मैं जरा बात करना चाहता हूँ उन नौजवानों से जिस वक्त रेडियो फजा सुन रहे। मेरे नौजवान दोस्तों, आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, मोबाइल नहीं, आपके पास सबसे कीमती चीज है आपका अपना वक्त। और वक्त को जाया मत कीजिए। सोशल मीडिया देखना बुरा नहीं, तफरीक करना भी बुरा नहीं, दोस्तों से बात करना भी बुरा नहीं, लेकिन अगर आपका पूरा दिन दूसरों की जिंदगी देखते हुए गुजर रहा है और आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए घंटा भी नहीं निकाले तो फिर जरा रुक कर सोचने की जरूरत है। दूसरों की कामयाबी देखकर हसद करने के बजाय अपनी कामयाबी के लिए काम करें। किसी का नया फोन देखकर परेशान होने के बजाय अपनी महारत बेहतर करें। किसी की नई गाड़ी देखकर दिल छोटा करने के बजाय अपना हदफ बनाएं। किसी की शोर देखकर जलने के बजाय अपनी पहचान बनाएं, क्योंकि हर इंसान का सफर अलग है। किसी का बाप 10 पर है, अभी बाप 3 पर है, तो बाप 10 वाले से अपना मुवाजना क्यों? आपका वक्त आएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने बाप 3 में, यानी जिस स्टेप पे आप हैं, उसे मेहनत करना होगी। और एक बात हमेशा याद रखिए कि रफ्तार का कम होना शिकस्त नहीं होता। कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता, कुछ लोग देर से कामयाब होते हैं, लेकिन देर से कामयाबी नाकामी नहीं होती। इसलिए अगर आपकी उम्र के दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए तो परेशान ना हो, अपना रास्ता देखें, अपनी रफ्तार देखिए, अपनी मेहनत देखिए और अपने रब से ताल्लुक देखिए। जिंदगी मुकाबला नहीं है, जिंदगी सफर है, और इसी सफर में खूबसूरत सा सॉन्ग हो जाए तो क्या ही बात है। सुनिएगा और सर धुनिएगा, फजा 97.1 FM पे एक खूबसूरत सा सॉन्ग आपके लिए हाजिर है।

वेलकम बैक। गाना आपने सुना है यकीन आपकी हसीन समातों को भी खूब भाया होगा, दिल को छुआ होगा, शायद किसी खूबसूरत याद के दरवाजे भी खोल दिए होंगे। अगर आप इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं तो जनाब इस मुस्कुराहट का क्रेडिट हमें नहीं उस खूबसूरत गाने को जाता है। एक बार फिर खुश आमदीद। अगर आप भी हमारे साथ शामिल हुए हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा FM 97.1 और चल रहा है आपका अपना आफ्टरनून मिक्स। दोस्तों मौसीकी भी कमाल चीज़ है ना, कभी कभी एक गाना इंसान को बरसों पीछे ले जाता है। एक धुन बजती है और अचानक कोई पुरानी शाम याद आ जाती है, कोई दोस्त याद आ जाता है, कोई सफ़र याद आ जाता है, कोई खूबसूरत लम्हा याद आ जाता है। और यही तो ज़िंदगी है, यादों का एक खूबसूरत सा मजमू है। लेकिन आज की हमारी बात सिर्फ यादों तक महदूद नहीं, हम बात कर रहे हैं आज की, क्योंकि माजी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर है लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं। जो गुजर गया वो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है मगर हमें वहीं बिठा नहीं सकता। इसलिए अगर माजी में कोई गलती हुई तो उसे सबक बनाइए, सज़ा नहीं। अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दी है तो इस तकलीफ़ को अपनी पूरी शख्सियत मत मानने दीजिए। अगर कोई मौका हाथ से निकल गया तो अगले मौके के लिए तैयार रहिए। और कभी ज़िंदगी ने आपको बहुत ज़ोर से गिराया तो ज़रा गर्द झाड़िए, खड़े होइए, कपड़े दुरुस्त कीजिए और फिर मुस्कुरा कर कहें चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। क्योंकि असल कमाल ये नहीं कि इंसान कभी गिरे ही नहीं, असल कमाल यह कि गिरने के बाद इंसान दोबारा खड़ा हो जाए। और मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर भी यही है, एक ऐसा इंसान जो हालात से थका हुआ है लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ता, जिसके पास वसाइल कम है लेकिन हौसला बहुत है, जिसके रास्ते में रुकावटें हैं लेकिन कदम फिर भी आगे बढ़े हैं। तो आज अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, ये बाब है पूरी किताब नहीं। आज मुश्किल है तो ज़रूरी नहीं कल भी मुश्किल हो, आज रास्ता बंद है तो ज़रूरी नहीं हमेशा बंद ही रहे। और अगर आज आपको अपनी मंजिल नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल मौजूद ही नहीं, कभी कभी रास्ते नज़र आने से पहले इंसान को चलना शुरू करना पड़ता है। तो चलिए आज एक छोटा सा कदम उठाते हैं, किसी को माफ़ करना है कर दीजिए, किसी से माज़रत करनी है कर लीजिए, किसी को फ़ोन करना है कर लीजिए, कोई काम कहीं इनसे मौखर कर रहे हैं तो आज शुरू कर दीजिए। अगर कोई ख्वाब दिल में छुपा हुआ है तो आज सिर्फ उसे ख्वाब न रहने दीजिए बल्कि उसके लिए अमली कदम उठाइए। ये ख्वाब वही खूबसूरत होते हैं जिनके पीछे मेहनत चल रही हो। तो दोस्तों आज की खूबसूरत महफिल अभी जारी है आफ्टरनून मिक्स, आप जहां कहीं भी हैं हमारे साथ रहिए।

ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा एफएम 97.1 और चल रहा है आपका अपना आफ्टरनून मिक्स। और दोस्तों, वक्त वाकई बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, पता ही नहीं चला कब ये दोपहर शुरू हुई, कब हमने आपसे बातें शुरू की, कब मौसीकी के रंग बिखरे, कब आपकी महफिल में हम शामिल हुए। अब घड़ी हमें बता रही है कि प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ा है, लेकिन जाने से पहले दिल चाहता है कि आज की खूबसूरत महफिल को सिर्फ गाने और बातों पर खत्म ना कीजिए, क्योंकि ना कुछ ऐसी बातें कर लीजिए जो शायद रेडियो बंद होने के बाद भी आपके साथ रहें, कुछ ऐसी बातें जो शायद रास्ते में आपको याद आएं, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपके किसी फैसले में आपकी मदद करें, और कुछ ऐसी बातें जो शायद किसी एक इंसान का दिल हल्का कर दें। तो आइए आज के इस दोपहर के आखिरी हिस्से को थोड़ा सा खास करते हैं। सबसे पहली बात, अपने वालिदैन की कदर कीजिए। ये बात हम रोज़ सुनते हैं, लेकिन शायद इतनी ही अहम बात है जितनी हम इसे आम समझने लगते हैं, लेकिन वालिदैन हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। आज जो आवाज़ हमें घर में सुनाई देती है, कल शायद हमें उससे याद करें। आज जो शख्स हमें बार बार नसीहत करते हैं, कल शायद हम उसकी नसीहत को तरसें। इसलिए अगर घर में वालिदैन मौजूद हैं तो उनके साथ वक्त गुजारिए। सिर्फ उनके लिए चीज़ें खरीदना मोहब्बत नहीं, उनके पास बैठना भी मोहब्बत है, उनकी बातें सुन लेना भी मोहब्बत है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना भी मोहब्बत है, और कभी बगैर किसी वजह के जाकर सिर्फ ये कह देना, अम्मी आप कैसी हैं या अबू आज तबीयत कैसी है। यकीन के लिए छोटे जुमले बहुत बड़ी खुशी बन सकते हैं। और दूसरी बात, अपने अल्फाज का ख्याल रखिए। इंसान तलवार के ज़ख्म को भूल सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात अल्फाज का ज़ख्म बहुत देर तक रहता है। गुस्से में बोले हुए अल्फाज वापस नहीं आते, इसलिए जब गुस्सा आए रुक जाइए, एक लम्हा खामोश हो जाइए, पानी पी लीजिए, जगह बदल लीजिए, लेकिन ऐसा जुमला मत बोले जिस पर बाद में पछतावा हो, क्योंकि माफ़ी मांग लेना अच्छी बात है, लेकिन किसी का दिल ना तोड़ना इससे भी खूबसूरत बात है। अगर आपसे किसी का दिल दुख गया तो अना को एक तरफ रखिए, माजरत कर लीजिए, मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। नहीं जनाब, माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता, कभी कभी माफ़ी मांगने के लिए एक इंसान को बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। और तीसरी बात, हर रिश्ता वक्त मांगता है। हम कहते हैं वो मुझे समझता नहीं, लेकिन कभी हमने उसे समझने की कोशिश की, हम कहते हैं वो मेरे लिए वक्त नहीं निकालता, कभी हमने वक्त निकाला हो उसके लिए। रिश्ते सिर्फ तवक्कात से नहीं चलते, रिश्ते तवज्जो से चलते हैं, बातचीत से चलते हैं, एहतराम से चलते हैं, और सबसे बढ़कर एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने से चलते हैं। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, ना आप, ना मैं, ना कोई और, इसलिए रिश्तों में परफेक्शन नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और दोस्तों, चौथी बात बहुत अहम है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। सोशल मीडिया ने हमें एक अजीब आदत दे दी है, कोई कुछ कहता है हम जवाब दे देते हैं, कोई कमेंट करता है हम जवाब दे देते हैं, कोई तनकीद करता है हम मजाक शुरू कर देते हैं। जनाब, हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज़हानत है, कुछ लोगों से फासला रखना भी सुकून है, और कुछ बातों से खामोशी से निकल आना भी कामयाबी है। आप अपनी तवानाई हर शख्स को जवाब देने में खर्च ना करें, अपनी तवानाई अपनी ज़िंदगी बनाने में लगाएं, अपने काम में लगाएं, अपने घर में लगाएं, अपनी तालीम में लगाएं, अपनी सेहत में लगाएं, अपने मुस्तकबिल में लगाएं, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता। और यही हमारी अगली बात है, वक्त की कदर कीजिए। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, मोबाइल दोबारा खरीदा जा सकता है, गाड़ी दोबारा ली जा सकती है, लेकिन गुजर जाने वाला वक्त वापस नहीं आता। इसलिए अगर कोई काम ज़रूरी है तो उसे सिर्फ ये कहकर मौखर ना करते रहें कल कर लेंगे, कभी कभी कल आता ही नहीं है। आज जो कहना है कह दीजिए, आज जो सीखना है सीख लीजिए, आज जो करना है कर लीजिए, आज जिससे मोहब्बत है उसे बता दीजिए, और आज जिससे माजरत करनी है उसे माजरत कर लीजिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर दोस्तों, इतनी मुख्तसर कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वक्त कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आइए वक्त से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, माजी की उन हसीन यादों में, जहाँ ये खूबसूरत सॉन्ग आपने भी अपने माजी में सुना होगा। सुनिएगा और सर दुनिएगा, फिर बात करते हैं।

अभी हम बचपन की बातें कर रहे थे और देखते देखते जवानी गुजरने लगती है, इसलिए जिंदगी को सिर्फ गुजारे नहीं, महसूस भी करें। बारिश हो तो बारिश महसूस करें, चाय पिएं तो चाय का जायका महसूस करें, अपनों के साथ बैठे तो मोबाइल एक तरफ रख दें, बच्चे बात करें तो उनकी बात सुने, माँ आवाज़ दे तो जवाब दें, वालिद बुलाए तो फौरन जाएं, क्योंकि ही छोटे छोटे लम्हे बाद में बड़ी यादें बन जाते हैं। और हाँ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। हम अपने फ़ोन को चार्ज करना नहीं भूलते, लेकिन अपने जिस्म को आराम देना भूल जाते हैं। हम मोबाइल की बैटरी देखते रहते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी लेवल नहीं देखते। कुछ देर सो लीजिए, पानी पी लीजिए, चलने फिरने की आदत बनाइए, अपनी ग़ज़ा का ख्याल रखिए, अपने जहन को भी आराम दीजिए। हर वक्त परेशानी सोचते रहना मसले का हल नहीं, कभी कभी मसला अपनी जगह होता है, लेकिन इंसान का जहन उसे 10 गुना बड़ा बना देता है। इसलिए जो चीज़ आपके इख्तियार में उस पर काम करें, जो इख्तियार में नहीं उसे अल्लाह के सुपुर्द करें। ये फ़र्क सीख लीजिए और फिर देखते देखते दिल कितना हल्का हो जाता है। दोस्तों, एक और बात अपने नौजवान दोस्तों से, अगर आपके पास ख्वाब हैं तो शर्मिंदा मत हो, बड़ा ख्वाब है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब के साथ मेहनत भी रखिए। सिर्फ मोटिवेशन से, सुनने से ज़िंदगी नहीं बदलती, अमल से बदलती। 1 घंटा कम सोशल मीडिया, 1 घंटा ज़्यादा सीखने में, 1 घंटा कम फजूल गुफ्तगू, 1 घंटा ज़्यादा अपने मकसद के लिए रोज़ थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। आपको 6 माह बाद फ़र्क नज़र आएगा, 1 साल बाद लोग फ़र्क महसूस करेंगे, और कुछ साल बाद शायद आप ख़ुद पीछे मुड़ कर कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन हिम्मत नहीं हारी थी। तो हिम्मत मत हारिए, आपका वक्त भी आ सकता है, आपकी मेहनत भी रंग ला सकती है, आपकी दुआ भी कबूल हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश जारी रखनी है। मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, तो जनाब हालात बदलने में वक्त लग सकता है, लेकिन आप आज से अपनी समत बदल सकते हैं। एक कदम, सिर्फ एक कदम आज, फिर कल एक कदम और, इस तरह इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है।

तो दोस्तों अब वो लम्हा आ पहुंचा है जब इस खूबसूरत महफिल से इजाजत लेना होगी। वक्त का तो यही दस्तूर है ना कि आता है, गुजरता है और फिर यादों का हिस्सा बन जाता है। आज की दोपहर भी आपके साथ बातें करते, मुस्कुराते, सुनते और सुनाते हुए कहां से कहां पहुंचे पता ही नहीं चला। आप जहां कहीं भी थे, जिस काम में मसरूफ थे, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमारी आवाज़ को अपनी समातों तक जगह दी, हमारी बातों को सुना। इस मोहब्बत और एतमाद के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, ज़िंदगी को मुश्किल बनाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, आप किसी के लिए आसानी बन जाइए। जो दिल तोड़ते हैं आप दिल जोड़ने वाले बनिए, जो मायूसी बांटते हैं आप उम्मीद बांटिए, और जहां मुमकिन हो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आइए। अपने वालिदैन की कदर कीजिए, अपने रिश्तों को वक्त दीजिए, अपने ख्वाबों के लिए मेहनत कीजिए, अपने रब पे भरोसा रखिए। अगर आज का दिन अच्छा गुजरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अगर आज का दिन मुश्किल गुजरा तो यकीन रखिए कि आने वाला दिन बेहतर भी हो सकता है। बस उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़िए। और हाँ, अगर आज की हमारी कोई बात आपके दिल को लगी हो, किसी लम्हे आपको मुस्कुराने पर मजबूर किया हो, या हमारी किसी बात ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो समझ लीजिएगा आज की ये महफिल कामयाब रही। क्योंकि रेडियो का मकसद सिर्फ आवाज़ पहुंचाना नहीं, कभी कभी एहसास पहुंचाना भी होता है, और आज हमने यही कोशिश की। मेरे प्यारे सामीन, आप इजाज़त दीजिए, अपना अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं तो आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा हैदर, और आप सुन रहे थे रेडियो फ़ज़ा एफ़ एम 97.1 पर आपका अपना आफ्टरनून मिक्स। इसी मोहब्बत के साथ, इसी खुलूस के साथ, फिर किसी खूबसूरत दिन, किसी खूबसूरत वक्त, किसी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप जहाँ कहीं भी हों महफूज रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। यह था आपका आफ्टरनून मिक्स, और मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

0: कहां पे।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड दैब, और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ समीर, और हमारे शो का नाम है ड्राइव टाइम। हम अपने सभी सुनने वालों को अपने शो में वेलकम कहते हैं। और आज हमारा जो शो का छोटा सा टॉपिक होगा, मेन जो पर्पज़ है वो तो एंटरटेनमेंट है, और साथ साथ जो है वो रियल लाइफ के रिलेटेड हम छोटा सा टॉपिक चूज़ करते हैं, और उस पर आप लोगों की राह और आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है उसको हम शामिल करते हैं अपने शो में। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा दोस्ती, फ्रेंडशिप। आज हम इस चीज़ पे डिटेल से बात करेंगे कि दोस्त

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: हिट म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, पोएट्री, न्यूज एंड हेल्थ, ऑल अंडर वन रूफ। आवर रेडियो स्टेशन सरपासिंग ऑल बाउंड्रीज एंड कीपिंग यू कनेक्टेड। इट्स रेडियो फजा 97.1।

Welcome again back into Faza 97.1 FM and DAB. अभी हम लौट के आ चुके हैं. पहले हमने एक जो है वो ट्रैक प्ले किया था दोस्ती के रिलेटेड, और उसके बाद हमारी चुनी मुनी सी एक पर्शल ब्रेक थी, उसको हमने ऐड किया. उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिसनर्स के लिए. तो इस तरह कोई हमारे लिसनर्स हैं, उनका कोई कारोबार अगर उसको प्रमोट करना चाहते तो हमारे साथ अपना जो है वो कॉन्टैक्ट शेयर करें. हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी और आपके लिए एक बेहतरीन सी जो है वो मार्केटिंग कंपेन प्रिपेयर करेंगी और उसको जो है ना आपके बिजनेस को हेल्प आउट करेंगे. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप क्या होती है इसमें थोड़ी सी आप हम इसकी डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे और साथ साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस भी शामिल करते चलेंगे अपने प्रोग्राम में. कहते हैं कि फ्रेंडशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान एक ऐसा खूबसूरत मुखलिसाना रिश्ता है जो सच्ची मोहब्बत, बाहमी एहतराम और गैर मशरूत इत्माद पर कायम होता है. क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है? इस रिश्ते की बुनियाद पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते हैं बगैर किसी मतलब या फ़ायदे के. एक दूसरे का साथ देते हैं और मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद जो है वो करने के लिए रेडी रहते हैं, और लोग मदद करते हैं अपने फ्रेंड्स की. लेकिन अभी आपको फील हो रहा होगा कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो ऑन द नीड आर आपके साथ, उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की. सम टू जो आपका दोस्त भी होता है वो भी कहीं पर फंसा हुआ होता है या वो किसी ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता. और हम जो है वो इंस्टेड ऑफ कि उसके साथ डिस्कस करें लेटर ऑन, हम डिस्कस नहीं करते और हम जो वो बात होती है वो दिल में रख लेते हैं और वो फिर इसी तरह सालों गुजर जाते हैं. तो एक मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे साथ चलती रहती है और कहीं ना कहीं हमसे वो हमारा जो बहुत ही करीबी और जो मुखलिस दोस्त होता है वो हमसे छूट जाता है.

वेलकम बैक। यकीनन आपने इस सॉन्ग को बहुत इंजॉय किया होगा और आपको जो अपने जो करीबी दोस्त थे, दिल के जिगर और जिगर के जानी इस तरह के दोस्त थे, वो याद आए होंगे और उनके साथ गुजरा हुआ वक्त भी जो है वो आपको याद आ रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी और मेरी तरह जो है उनके साथ जो कॉन्टेक्ट है वो कहीं ना कहीं टूट सा गया है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? सर, मैं जब स्कूल टाइम की जो है एक जो है अपना एक्सपीरियंस आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा जो है एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मेरी जो लेग फ्रैक्चर हो गई थी। तो मेरे दोस्त जो है वो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की उस पर, जब मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ और मैं जब हॉस्पिटल में था तो तब फिर मेरे जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो वो मेरा एक दोस्त था तो वो मुझे रोज़ घर से लेके जाना स्कूल और पेपर दिलवा के उधर पूरा 2-3 घंटे मेरा इंतज़ार करना, फिर मुझे घर छोड़ के जाना, तो साथ अपने पेपर को भी प्रिपेयर करना, जो क्योंकि मैं एक ही क्लास में थे और वो मेरा क्लास फेलो भी था और बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो आज मुझे बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था जब मैंने ये टॉपिक चूज़ किया कि मैं अपना जो इस टॉपिक को अपने इस शो में जो है वो रिप्रेजेंट करूँगा और इस पे जो है ना थोड़ा सा डीप डिस्कशन होगी कि फ्रेंडशिप बेसिकली चीज़ क्या है और इसमें अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है पूरी दुनिया में, बहुत ही लाइफ बिजी हो गई है जिसकी वजह से हम अपने रिलेटिव्स और प्लस जो हमारे जो दोस्त हैं उनको टाइम नहीं दे पा रहे। अभी वो KSA सऊदी अरेबिया में है लेकिन फिर भी उसकी पोस्ट वगैरह तो मैं देखता हूँ, लेकिन तकरीबन 2-3 साल हो गए मेरी उससे बात नहीं हुई। आज मैंने जो है इससे अपना माइंडसेट बनाया कि मैं आज उसको कॉल करूँगा और अभी आप लोगों के साथ भी यही आपको रिकमेंड करेंगे कि आप भी अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जो जिन्होंने आपका जो ओल्ड डेज में और गुजरी यादों में आपका जो बहुत ज़्यादा साथ दिया, तो आप उनको भी आज याद करेंगे और उनका फाइंड आउट करेंगे कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिले और उनसे आप जो है ना डिस्कस करें और गपशप लगाएं।

की सॉन्ग डेडिकेशन है वो भी हमें जो रिक्वेस्ट वसूल हो रही है अपने इस प्रोग्राम में, तो उसको भी हम साथ साथ प्ले करते चलेंगे। और क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है इस शो का वो है एंटरटेनमेंट, एक वक्त था जब मैं पाकिस्तान में हुआ करता था और स्टूडेंट लाइफ थी वो बड़ी अच्छी लाइफ थी, तब पैसे कम हुआ करते थे, क्रिकेट खेलते थे तो अक्सर जो है ना वो उसके जो प्लेइंग इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए पैसे शॉर्ट ही रहा करते थे। लेकिन वो जो दिन था वो संडे का दिन वो बड़ा अच्छा गुजरता था और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता था। इस तरह लाइफ आगे बढ़ती गई और अपने कैरियर को चूज़ करते करते कोई किधर चला गया। कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो जानने वाले और वो जो हमारे फ्रेंड्स थे वो ओवरसीज़ हो गए, कुछ बैक कंट्री में रह गए। आज पैसे भी हैं और वो सारे इक्विपमेंट अकेले भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो सारे दोस्त नहीं मिल सकते जिनके साथ हमें खेल के जो है एक बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास हुआ करता था। क्या आप लोगों को भी ऐसे दोस्त थे? और यकीनन होंगे, जिधर भी बंदा मतलब पैदा होता है और जिस सराउंडिंग में वो लाइफ जो स्टार्ट करता है तो उधर उसके दोस्त दुश्मन जो है वो सभी होते हैं। और अभी आपका जो एक्सपीरियंस है उसको भी साथ साथ शामिल करते चलेंगे और एक सॉन्ग की जो है वो रिक्वेस्ट आई है उसको भी हम अभी अपने प्रोग्राम में प्ले करेंगे।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੇ।

Welcome back again in for the 97.1 FM. ये हमें रिक्वेस्ट आई थी आमर से, और आमर कह रहे थे कि ये मेरा बड़े प्यारे दोस्त है जिनको मैं मिस कर रहा हूँ यूके में, तो उनके लिए मुझे ये डेडिकेशन वाला सॉन्ग चाहिए। तो अगर आप इस सॉन्ग को इस शो में शामिल करें तो मेरे एक दोस्त है आसिम। इसी तरह मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मेरा क्लास फेलो भी था, और बड़ा एक जगह हम गए तो वो कहते हैं कि ये कौन है, तो ये कहते हैं हम जुड़वा दोस्त हैं। हालांकि जो जुड़वा होते हैं वो बहन भाई होते हैं। तो हमें ज़रा स्कूल से छुट्टी जल्दी होती थी, फिर हम जो है ना वो दरिया पे नहाने जाया करते थे हम दोनों। एक दिन उसने मुझे बोला कि आज हमने स्कूल नहीं जाना, सुबह मतलब प्लानिंग की, वो मेरे साथ साथ घर मेरे घर की तरफ आ रहा था कि आप सुबह स्कूल नहीं जाएंगे, सुबह जो है हम एक फ्लान एक नई जगह उधर नहाने जाएंगे। मैंने बोला यार कि स्कूल में ना तो मतलब मार पड़ती है और एजुकेशनल जो हमारी ट्रैक है वो भी ठीक चल रहा है, तो मैं स्कूल से वो बंक नहीं करूँगा। तो वो मुझे मेरे साथ साथ चलता गया, मैं घर की तरफ मैं आ रहा था। तो एट द एंड मिड वे में मैं मान गया, फिर हमारी प्लानिंग स्टार्ट हुई कि हम कैसे एक जगह पे मिलेंगे। तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे स्टूडेंट का पास, तो वैसे भी नहीं हुआ करते थे क्योंकि तब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी मोबाइल वगैरह पे। एक गेमिंग जोन था, उसको फाइनलाइज किया कि वो हमारी बेटा प्लेस होगी। तो सुबह जब मैंने घर से किताबें कम डाली अपने बैग में कि आज हमने जो है ना वो एक जगह पे कह लेंगे घूमने जाना है, तो वो जो प्लान जगह थी वो उधर जब मैं पहुंचा तो वो मुझे नहीं मिला। जब वो नहीं मिला तो मेरे स्कूल से दो तीन लोग लड़के मतलब स्टूडेंट और भी भागे हुए थे स्कूल से, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो फिर मैंने कहा यार वो तो मिला नहीं है, और अभी घर गए तो तब भी मार पड़ेगी, और अगर स्कूल जाते हैं तो वो भी टाइम निकल चुका है, तो उधर से भी जो है वो पनिशमेंट मिलेगी, तो क्या किया जाए। तो फिर हमने बीच का रास्ता जो है ना वो अडॉप्ट किया, एक ग्रेवयार्ड था तो उधर जाके जो है ना हमने वो दिन जो है उधर गुजारना था, और सुबह से जो दोबारा हमारा जो ट्रैक था उस पे आना था। तो इसी तरह फिर हमने ऐसा ही किया, कब्रिस्तान में चले गए। तो हम तीन लोग थे, वो दो प्रोफेशनल थे, वो रोज डेली बेसिस पे बंक किया करते थे, और मेरा जो फर्स्ट डे था दोस्त की बातों में आके मैंने वो बंक तो कर लिया, लेकिन वो मेरा जो जिगरी दोस्त था वो मुझे मिला नहीं। तो एक जो है ना एक अंकल आए, तो उन्होंने बोला कि आप इधर लोग क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि हम जो है स्कूल से लेट हो गए हैं, और अभी अगर हम स्कूल की तरफ जाते हैं तब भी मार पड़ेगी, और अगर घर की तरफ जाते हैं तो तब भी पनिशमेंट होगी, तो आज का दिन हम इधर ही गुजारते हैं, तो नेक्स्ट जो है ना सुबह से वो अपने रूटीन सेट कर लेंगे। वो शख्स जो है ना वो कहता है कि मुझे मैं आप लोगों को स्कूल छोड़ के आता हूँ, तो कोई बात नहीं। हमने कहा कि हमने बड़ी रिक्वेस्ट की कि हमें स्कूल की तरफ ना लेके जाया जाए, लेकिन वो बड़े बजिद हो गए थे। वो तकरीबन दो किलोमीटर का वो डिस्टेंस था, तो वो स्कूल की तरफ लेके गए, तो वो लड़कों जो दूसरे लड़के थे उनके पास तो बैग नहीं थे। उन्होंने जब देखा कि ये बंदा वेरी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, तो वो फिर एक गली आई, तो उधर से उन्होंने लेफ्ट ले गए, वो भाग गए, और मेरा फर्स्ट डे था तो मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। तो फिर वो स्कूल की तरफ ले गए, गार्ड मिले, तो उन्होंने कहा कि आज जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो बड़े गुस्से में हैं, तो अगर इसको आप अंदर लेके जाएंगे तो पनिशमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप अगर ऐसा ना करें। कहते नहीं नहीं मैंने इसको स्कूल अंदर जो है ना इसकी कंप्लेन रजिस्टर करवानी है उनके पास, और इसको मैं स्कूल छोड़ के जाऊँगा। फिर ऐसा ही हुआ, तो हेडमास्टर साहब के पास हम चले गए, तो उन्होंने उनका थैंक्स बोला कि आप जो है ना स्टूडेंट को इधर लेके आए हैं। उन्होंने बोला कि दो और भी थे वो भाग गए, ये लगता है कि थोड़ा सा बेहतर स्टूडेंट है तो ये मेरे साथ है, तो अंदर तक आ गए। ऐसे भी फिर उन्होंने हेडमास्टर साहब ने जो है वो मेरे वाले साहब को कॉल की कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल से भागा हुआ था, तो क्या करना है इसका, अगर आप आएंगे तो हम इसको जो है ना स्कूल में कंटिन्यू करने देंगे, अदरवाइज इसको जो है ना स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो मेरे वाल साहब का एक बड़ा एक मुझे भी याद आता है कि वो ऐसा आंसर था कि उनका हेडमास्टर साहब का दिल था कि वो मेरे वालद उनकी रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चे को जो है ना वो फॉरगिव किया जाए और इसको जो है ना दोबारा क्लास कंटिन्यू करनी दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उन्होंने बोला कि यार जो अरमा साहब को कि हमारी फैमिली में कोई भी एजुकेटेड नहीं है और ये भी जो है वो टाइम ज़ाया कर रहा है, तो इसका जो बैग अपने पास रख लें और हमारा बच्चा जो है घर भेज दें, ये सुबह से अपने भाई के साथ जो है ना वो काम सीखने जाया करेगा। तो अरमा साहब ने एंड ऑफ द स्टोरी ये कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप भी स्कूल ना आए और बच्चे को स्कूल आने दें, कि आप इसका स्कूल ना छुड़वाएं। तो देन आई डिसाइडेड कि आई एम टू स्टडी हार्ड एंड स्टडी स्मार्ट। आगे कमर्शियल ब्रेक आ रही है और कमर्शियल के ब्रेक के बाद उसके जो है ना हमारी आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी और हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: Ready to move.
7: It's all about the beats.
8: Wow, FM.
9: Only Tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

वेलकम बैक अगेन इन फजा 97.1 एफएम एंड डैब। अभी हम लौट के आ चुके हैं एक कमर्शियल ब्रेक से, और कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले हम जो है ना वो एक मैं अपनी एक लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा था कि दोस्तों का आपका जो दीन ईमान होता है वो आपके दोस्तों पे होता है, और बंदे की पहचान भी बंदे के दोस्तों से होती है। वो कहते हैं कि जैसी वो के बंदे की कंपनी होगी वैसा ही उसका बिहेवियर होगा। तो जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं वो तो अभी जो नए आने वाले उनको जो ये स्टोरी तो नहीं समझ आएगी क्योंकि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो जो अभी सुन रहे जो पहले से सुन रहे थे तो उनको जो है ना स्टोरी का एंड सुनाने वाला हूँ मैं। तो एडमार साहब ने जो है वो वाले साहब को कॉल की कि आपका जो बच्चा है वो हमें एक कब्रिस्तान से मिला है और एक जो जो शख्स है वो छोड़ के गए हैं, तो जो है वो ज़्यादा बच्चे का नुकसान हो सकता है, किसी हेलिनियस सिचुएशन में वो जो है वो बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये जो है ना बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है ना वो स्कूल में पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वो अटेंड करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम आपके बच्चे को रेजिग्नेट कर देंगे इधर स्कूल से। तो मेरे जो वाले साहब थे उन्होंने बोला कि हमारी फैमिली में ऑलरेडी कोई एजुकेटेड नहीं है और इसने भी कोई नहीं पढ़ना, तो आप इसका जो बैग वो अपने घर पे इधर स्कूल में रख लें और इसको घर पे भेज दें। अभी भी मुझे याद है कि अरमान साहब जो हैं जो बड़े एक जो नीक अंदाज में बोला कि कैसे कैसे वालदैन हैं, तो मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने मुझे बोला अरमान साहब ने कि अभी आप अपनी क्लासरूम में जा सकते हैं। तो जब मैं क्लासरूम में गया तो वो तकरीबन दिन के तकरीबन 10:30 या 11 हो चुके थे। तो आगे क्लास इंचार्ज थे तो वो कहते हैं कि जी किधर, स्कूल तो 8:30 बजे लगता है। तो जब मैं अरमान साहब के रूम में था तो मैं अपनी जो है ना वो नेक्स्ट मूव जो है वो उसको फॉर्म कर रहा था अपने माइंड में कि इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट मूव होगी वो क्या होगी। तो मैंने जो मैं क्लास टीचर थे उनसे उनके साथ ये बोला कि मैं जो अपनी नानी के घर गया हुआ था तो उधर से मैं आया हूँ, तो मैंने कहा घर पर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं स्कूल चला जाऊँ। तो जो हमारे टीचर थे वो बड़े खुश हुए और उन्होंने सारी क्लास को जो है अटेंशन करके बोला कि ये देखें जी कि एजुकेशन के साथ कितनी डेडिकेशन है इस बच्चे की, तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम इसने स्कूल आने को जो है ना वो प्रेफर किया है। तो आप लोगों के दरमियान भी यही जो है वो स्टडी का जज्बा होना चाहिए। हालांकि वो जो एक्चुअल सिचुएशन थी वो बिल्कुल इससे बाखबर नहीं थे। इसके साथ साथ जो दोस्तों की आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है वो तो पड़ता ही है, और साथ में जो है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट को भी हम शामिल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो अभी एक करण ओजला का सॉन्ग है वेवी, कहते हैं कि जी इसमें भी कुछ दोस्तों की बातें हुई हैं और उनको एड्रेस किया गया। तो एक जो हमारे लिसनर हैं इंडियन पंजाब से मनदीप, उन्होंने डेडिकेशन की है अपने एक फ्रेंड को, तो हम इस सॉन्ग को भी प्ले करेंगे। और आप लोग भी अपनी जो रिक्वेस्ट हैं और अपनी किसी को सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो अभी हमारा डेडिकेशन का जो एक सेगमेंट है वो स्टार्ट है। सो प्लीज़ हरी अप, बुक योर स्लॉट।

वेलकम बैक। अभी हम सॉन्ग सुन रहे थे करण ओजला का वेवी। और मेरा जो बेसिकली बैक कंट्री बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान पंजाब से, और ये जो सॉन्ग्स हैं वो इंडियन पंजाब के हैं। बस एक पार्टीशन के बाद एक हद बंदी आ गई, लेकिन हमारा जो सोचने का अंदाज़ है और फील करने का अंदाज़ है वो तकरीबन सेम है। मुझे लगता है हमारे सब कंटिनेंट में जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, और जो है दोस्तों के साथ स्पेंड किया गया टाइम जो है वो उसको जो है एक एसेट माना जाता है। दोस्त को दोस्त की तरह लेना चाहिए, और उसके साथ जो ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है जो है वो मुंसलिक करनी चाहिए कि वो सम टाइम वो उस कंडीशन में नहीं होते हमारे दोस्त जो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर सके। हम कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ हो जाते हैं, और इसी तरह वो नाराज़गी जो है वो सेपरेशन तक चली जाती है। फिर सालों हमारा उनके साथ जो है वो कनेक्शन रीबिल्ट नहीं हो पाता। क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है? छोटा सा फनी और पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मुझे जो है एक दिन कुछ पैसों की ज़रूरत थी, और मैंने चार दोस्तों के साथ कांटेक्ट किया, तो एक के पास थे पैसे मुझे पता था, लेकिन उसने मुझे वो पंजाबी में कहते हैं कि टोपी करना चाका देना, उसने मुझे जो है ना एक दूसरे दोस्त को रिकमेंड किया कि वो कहता है कि जो पहला दोस्त था वो मुझे कहता है कि मेरा जो अकाउंट का कुछ इशू है और जो है ना एप्लीकेशन नहीं चल रही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप जो है ना वो फलां दोस्त के साथ कांटेक्ट करें तो वो ही कैन हेल्प यू आउट। मुझे बड़ा दुख लगा, मैंने कहा यार ये मेरा बड़ा पक्का और बचपन का दोस्त है, तो ये मुझे सामने सामने जो है वो डाज करवा रहा है। लेकिन खामोशी ही बेहतर इस चीज़ का हल था। तो दूसरे दोस्त के साथ मैंने बात की तो वो कहता है यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको जितने पैसे चाहिए तो मुझे एक बार बताएं कि और अपना अकाउंट नंबर भेजें, मैं आपको जो है ना वो फॉरवर्ड करता हूँ। लेकिन मैंने जो है वो जिस दोस्त पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी तो मैंने उसके साथ बिल्कुल नाराज़गी नहीं बनाई। वो अगर 5-6 बार मेरे काम आया और मेरी जो नीड्स को उसने फुलफ़िल किया, तो एक बार नहीं किया। तो हमें जो है ना इस चीज़ को दोस्त की तरह ही लेना चाहिए, और परफेक्शन दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती। दुनिया में हर चीज़ इनकम्प्लीट है। दूसरों में हम जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उनको जो है उनमें कम्प्लीटनेस देखना चाहते हैं, लेकिन दुनिया ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहती है। और इसके साथ साथ है कि जो है ना वो रिक्वेस्ट आई एक सॉन्ग की, तो उसकी तरफ चलते हैं।

0: सर आपका लोन निकला है।
1: रख वो रख दे, रख वो। I'm the dealer. ਠੰਡ ਰੱਖ ਗੱਲ ਕੀ
2: ਤੂੰ ਬੇਚਦਾ

वेलकम बैक। अभी हम लौट के आ चुके हैं, एक कमर्शियल ब्रेक थी और उसके बाद एक डेडिकेटिव सॉन्ग था, उसको हमने प्ले किया अपने इस शो में। जेनिफर लूप्स, हिट ऑन द फ्लोर विद पिटबॉल। सर आप भी अपना जो सॉन्ग किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो भी टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गया, तो एक लास्ट सॉन्ग जो है वो हम उसको ऐड करेंगे अपने शो में, तो देखते हैं वो खुशकिस्मत कौन होगा। आज हमारा टॉपिक था दोस्ती, फ्रेंडशिप। दोस्त बेसिकली हम जो है वो कहीं ना कहीं हमारा किसी से रابطہ बन जाता है, किसी के आदाब पसंद आ जाती है, किसी की बात पसंद आ जाती है, किसी का जो है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन हमें अच्छा लगता है, तो हम दोस्त बन जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो अननेसेसरी और उनकी जो कैपेसिटी से बियॉन्ड जो है ना वो एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। जब वो पूरा नहीं उतरते तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे अच्छे दोस्त नहीं। लेट्स सपोज अगर आपको 1000 पाउंड की इमीडिएटली ज़रूरत पड़ती है और अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त जो है वो उसने अच्छी गाड़ी रखी हुई है और अच्छा लाइफ स्टाइल है और उसका बिजनेस भी है, तो वो आपको जो है वो 1000 पाउंड नहीं देता, तो वो सालों की जो फ्रेंडशिप है और जो एक लॉन्ग टर्म आ रहा जो एक सिस्टम चलता आ रहा है उस पर हमें समटाइम जो है थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं और हम जो है ना ये फैसला नहीं कर पाते कि आया कि उसने हमें इग्नोर किया है या वो टेक्निकली हम ये सोचना ही नहीं चाहते समटाइम कि उसने जानबूझ के जो है ना हमारी हेल्प नहीं की। मे बी वो अपनी किसी और उलझन में हो और जो किसी और प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो जिसकी वजह से हमारी हेल्प नहीं कर पाया, तो हमें इस तरह देख लेना चाहिए कि जो हम एक बार दोस्त है उसने 7 या 9 बार काम आया तो एक बार नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मे बी वो किसी अपनी उलझन में हो। थोड़ी सी सजेशन है, आप लोग जब हम ड्राइव करते हैं तो सर ज़्यादा वो फोकस्ड होते हैं अपने इस रोड पे और सराउंडिंग की चीज़ें हम एनालाइज कर रहे होते हैं वाइल ड्राइविंग। आज आप सब लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ ऐसे दोस्त जो है जिनके साथ आपका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है और 2-4 साल हो गया आपका उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, तो हम अब जाएंगे अपने मोबाइल की वो जो ड्रोन नीचे वाली लिस्ट से स्टार्ट करेंगे और नीचे देखेंगे कि हमारा कौन सा ऐसा करीबी जिगरी दोस्त यार है जो हमसे दूर हो गया इस मसरूफ और डिस्ट्रैक्टिव एरा में। आजकल हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आम हो गया है और हम जो है एक बार उंगली रखते हैं अपने टच मोबाइल पे और 2-3 घंटे ऐसे कैसे गुजर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और जब हम मोबाइल की बैटरी ऑफ होती है या कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो फिर हमें लगता है कि यार हमारा ये काम करने वाला रह गया। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी ही फीलिंग्स होती हैं? दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो इंसान की हेल्प और उसके जो है ना वो ताबे रहने के लिए बनी है, लेकिन जब प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर जो है हमारे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है टेक्नोलॉजी हमारे पे हैवी हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी को हमने बिल्कुल भी हैवी नहीं होने देना, अपनी लाइफ को ईजी और जो है ना वो इन्जॉयबल रखने के लिए हमें उन लोगों के साथ दोबारा कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें खुशी मिलती थी और वो बहुत ही अच्छा टाइम गुजरता था और सुई और घड़ियों का जो एक तनाज़ुल होता है वो हमें बिल्कुल याद नहीं रहता था।

वेलकम बैक। अभी हम लौट के आ चुके हैं, हमने दो सॉन्ग्स प्ले किए हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, जितनी कोशिश कर सके हैं उनको प्ले करने की कोशिश की है। जो लोग रह गए हैं उनका जो भी डेडिकेशन है, किसी को सॉन्ग डेडिकेट करना है तो वो नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है वो उनको प्ले किया जाएगा। हमारा जो ये ड्राइव जोन का जो एक शो है, इसका मेन पर्पज़ तो जो है वो एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है वो लाइफ में जो बेटरमेंट है उसका भी एलिमेंट रहना चाहिए। कोई भी चीज़ है वो एक इंग्रेडिएंट के साथ नहीं बनती, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलते हैं और एक रेसिपी बनती है, तो फिर जाके एक फाइनल जो है वो एक चीज़ निखर के सामने आती है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो था फ्रेंडशिप, दोस्ती। दोस्त जो होता है वो आप अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं, और बहन भाई हैं वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जिधर आप पैदा होते हैं तो वो अल्लाह की तरफ से मिलते हैं, मेरा ये बिलीव है। कहते हैं जो आपके ब्लड रिलेशन होते हैं वो सोने की तरह होते हैं, और जो दोस्त होते हैं वो हीरे की तरह होते हैं। सोना जब हम घर पे हमारी वो बहन भाइयों में भी कभी ना कभी लड़ाई हो जाती है, कोई मतलब कोई ऐसी बात होती है जिस पे हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता, कभी कभी सालों लग जाते हैं, हम भी नाराज़ रहते हैं, लेकिन फिर भी जब मिलते हैं तो दोबारा जो है वो हम राज़ी हो जाते हैं। तो वो सोने की मिसाल इसलिए दी जाती है कि इसको रीशीट करके रीशेप किया जा सकता है। लेकिन जो दोस्त होता है वो हीरे की तरह होता है, और हीरा जो है वो समटाइम जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो ऑल द टाइम नॉट समटाइम वो सोने से ज़्यादा होती है। लेकिन जब एक बार इसमें क्रैक आ जाता है या ये टूट जाता है तो दोबारा ये रिपेयर नहीं होता। अभी हमने सीखना है कि अपने जो दोस्त हैं और उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो उनको माफ़ कैसे करना है, और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना कैसे, क्योंकि ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं रुकती। चाहे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खुशी का दिन है तो ये भी गुजर जाएगा, अगर बहुत बड़ी कोई टेंशन परेशानी वाली बात है तो वो भी एक वक्त आएगा कि वो भी ख़त्म हो जाएगी। मेरा एक छोटा सा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, जब मैं पाकिस्तान में था तो एक रेस्टोरेंट पे ट्रेनिंग मैनेजर था मैं उधर, तो एक ब्रिटिश थे, वो थे पाकिस्तानी लेकिन उनको वो यूके में टीचर थे, और मेरा उनके साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन बन गया। तो वो मंथली मुझे 20-25 हज़ार रुपया, और इसको कह लें कि आप जो है ना वो 100 पाउंड तक भेज दिया करते थे पॉकेट मनी। तो इसी तरह सिलसिला चलता गया, और जो है ना वो जो बात एक फॉर्मल कन्वर्सेशन से बढ़ते बढ़ते जो है वो एक फैमिली तक, और जो है ना वो डीप अंडरस्टैंडिंग होती कि मेरी और उनके दरमियान। उनकी लाइफ में एक इशू चल रहा था, तो वो उनकी एक बच्ची थी, और जो है ना वो उनकी वाइफ इधर पाकिस्तान में प्रोफेसर, बड़े हाईली एजुकेटेड फैमिली थी। तो मसला ये था कि वो उनकी जो कुछ कॉम्प्लिकेशन थी तो वो डिवोर्स करना चाह रहे थे जो मेरे दोस्त थे। तो मैंने एक दिन जो है ना उनकी ठीक ठाक क्लास ली, और जो बिल्कुल भी अपने बेनिफिट्स और अपने पर्स को जो है वो अपने लिए बेहतर नहीं समझा। मैंने कहा यार इस बंदे को जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना डांट डपट की ज़रूरत है, और जो है ना सेटिंग की ज़रूरत है। फिर मैंने उनको डांटा भी, और उन्होंने बोला कि आज तक मेरे वाले साहब ने जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी ऊंची आवाज़ में हमारे साथ बात नहीं की, तो हु आर यू, आप कौन होते हो कि मुझे आप समझाने की कोशिश करें, और मैं वो हूँ जो आपको मंथली जो है वो कुछ ना कुछ भेजता हूँ, तो आपकी ये जरूरत कैसे हुई है। मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा जो है ना गुस्सा आ गया, और मैंने कहा यार मसला ये है कि चलो मेरी तो आपकी फ्रेंडशिप तकरीबन 1 साल हुआ है, इससे पहले जब मैं पैदा हूँ और इतनी एज मेरी हुई है, तकरीबन तब मेरी 25 साल उम्र थी, तो तब से मेरा जो रिज़्क का निज़ाम है वो चल रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर एक वक्त आया कि वो बिल्कुल वो एक लायर के रूम में थे और डिवोर्स के पेपर साइन करने वाले थे, तो मैंने जो है ना उनके साथ एक बड़ी प्यारी बात की। मैंने कहा अगर आप डिवोर्स करते हो तो आपकी जो वाइफ है उनको नया हस्बैंड मिल जाएगा और आपको नई वाइफ मिल जाएगी, लेकिन जो आपकी बच्ची है इसको जो है ना कभी भी दोबारा पेरेंट्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने
نے کہا مجھے آج کے بعد آپ سے کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں چاہیے مجھے, میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کے جو بنا بنایا گھر ہے یہ خراب نہ ہو. تو جو میرے پاس انڈرسٹینڈنگ تھی, جتنا میری کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس تھا, میں نے ان کو جو ہے نا وہ اس سے وڈرا کر کے اور دوبارہ ایک جو میں نے کہا ایک چانس دیں مجھے اور آپ لوگ دوبارہ جو ہے نا ایک ٹرائی کرتے ہیں, اس کے بعد ڈیورس کا آپشن تو 24 گھنٹے ہمارے پاس ہے. تو ان کی وائف پاکستان میں تھی تو ان کا جو ہے نا وہ امیگریشن وغیرہ کی سیٹنگ کروا کے ان کو یو کے میں بھیجا. اور میں نے ایک چیز کی پریڈکشن دی کہ میں نے کہا آپ کی ایک بچی ہے وہ تقریباً 10 سال کی ہے اور نیکسٹ جو آپ کا ایک بیبی ہوگا تو پھر آپ کی لائف سیٹلڈ ہو جائے گی. تو پھر ایسا ہی ہوا اور ان کی ایک بچی پیدا ہوئی اس کے بعد تقریباً 10 سال بعد, ابھی وہ راؤنڈ اباؤٹ 5 ایئرس کی ہوں گی. ابھی ان کی جو ہے لائف بڑی اچھی چل رہی ہے. اور آج اگر میں جب کبھی ان کو کال کرتا ہوں یا میسج کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار کاش میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ابھی ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں جو ہے آپ کے ساتھ ملتا. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا, مائنڈ سیٹ اس لیے نہیں ملتا کہ پہلے آپ کے وہ جو وائف کے ساتھ جو تھوڑا ایشو چل رہا تھا تو ابھی وہ ریزالو ہو گیا, تو میرے لیے آپ ٹائم کیسے نکال سکتے ہیں. زندگی میں دوست جو ہیں وہ ایسے بھی ہونے چاہیے جو آپ کو صرف آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتے رہنا چاہیے, جگہ جگہ چاہیے, کہیں پہ بھی اگر آپ کی زندگی میں کوئی آپ غلطی کر رہے ہیں تو وہ اس کو نوٹیفائی کر سکیں اور ان کو آپ سے ان چیزوں سے ڈر نہ لگے. چلیں جی آج ہمارا جو شو تھا وہ 2 گھنٹے کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا, اور نیکسٹ جو ہے وہ منڈے کو آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ جو ہے ملاقات ہوگی. تو سنتے رہیں فضا 97.1 FM and DAB. اللہ نگہبان.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
4: No.
5: Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together, it all adds up.
9: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
10: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: You are staying. We are playing Fazan 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: It's
8: music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
10: I love it.
11: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.

0: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
1: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
0: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
3: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
3: foot tapping music.
5: Hazar 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

0: taking over the airwaves.
1: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल

0: बिल्डर्स चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
1: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
0: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
0: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
2: बिगर बिगर एंड बेटर बेटर द रेडियो स्टेशन फॉर पीपल हु लव म्यूजिक। 97.1 FM।

0: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
12: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown up by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slusser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are listening to Radio Fazer on 97.1 FM.

You're listening to 97.1 FM. This is Radio Fraser.

अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू

0: बच्चों को मत ऐ दोस्तों, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: खुदा।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: Yapır English or Arabic.
1: Fazan 97.1 FM.
0: Ho gaya na kamal.
2: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।